सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज

सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 23, तदनुसार 14 सितंबर वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।

0: इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं। समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

वंदन वार। सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

अपने अनोखे रूप और गुणों से श्री गणेश देते हैं जीवन के अनमोल सूत्र। मन में विश्वास की ज्योत जले तो जीवन पथ उजला ही दिखता है।

बस यही है प्रार्थना, सभी के मन के विश्वास और आस्था की डोर को स्वयं से बांधे रखना और इस जीवन के हर विघ्न को हरना। श्री गणेश।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 6:45 समय रहता है संगीत सरिता का। 7 बजे सुनना न भूलिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं 7:30 पर। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 8:15 समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक का समय रहेगा सुबह 8:30, और यही कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर भी। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज का अखबार प्रसारित किया जाता है 9:30 पर। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आज कार्यक्रम का विषय है हिंद का गौरव हिंदी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुनेंगे 11 बजे 11:30 पर आज के रोज यानी सोमवार को आप सुना करते हैं कार्यक्रम शेरो नगमा।

12 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से यादों की महफिल। 12:05 पर आप सुनेंगे ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और समाचारों का समय आपको बता दें 1:05 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 1:10 पर होंगे जालंधर से प्रादेशिक पंजाबी समाचार। फिल्म संगीत सुनना न भूलेगा 1:15 पर। एक बजकर 30 समय रहता है कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 बजे होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 पर समाचार बुलेटिन होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सदा बहार नगमे इस कार्यक्रम के अंतर्गत गोल्डन हिट्स आप सुन सकते हैं 2:30 पर। सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली 3 बजे रिले किया जाएगा। पिटारा खुलता है शाम 4 बजे और आज के पिटारा में सेहत नामा के अंतर्गत सुनिएगा पोषण पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। शाम 5 बजे हिंदी में

समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे शाम 6:00। प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10

आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे शाम 6 बजे। प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10 पर और पंजाबी प्रादेशिक समाचार होंगे 6:20 पर, जिन्हें हम आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हिंदी में समाचार समीक्षा आप सुनेंगे 6:30 पर। कुछ पंजाबी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:35 पर। फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय माला, इसका समय रहता है 7 बजे का। प्रादेशिक मुख्य समाचार 7:45 पर सुने जा सकते हैं। रात 8 बजे हवा महल में आज सुनिएगा नाटिका दीप शिखा। हिंदी में समाचार 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम का समय रहता है 9:30 का। ये कार्यक्रम आज आधारित होगा फिल्मकार जीपी सिप्पी पर। रात 10 बजे समय रहता है कार्यक्रम छाया गीत का। 10:30 पर होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 10:32 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुरसांझ। और रात 11 बजे सुनना ना भूलेगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। और अब समय हो गया है श्री रामचरितमानस का, जिसे हम सुनेंगे आकाशवाणी के विविध भारती मुंबई से।

रांगट के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्री राम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने के बहुत से गायकों ने सुबद्ध संगीत या उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं लोकप्रिय किया है गा करके, तो खास तौर से ठुमरी और दादरा जो हम सुनते अलग अलग गायकों की आवाज में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
2: जयंत जी, जी किराना घराने की ठुमरी है
1: जी,
2: जो ठुमरी बाकी नॉर्मल ठुमरी से थोड़ी अलग है।
1: अच्छा,
2: वैसे डायरेक्ट ठुमरी अगर आपने बोला तो उपशास्त्रीय अथवा सुगम शास्त्रीय संगीत में राग और शब्द को समान महत्व आता है। और इस घाट में विशिष्ट स्वर वाक्य में बंदिश के शब्दों में सौंदर्य पूर्ण गुम्फन करके शब्द का अर्थ और उसका भाव अधिक स्पष्ट करना और उसका जो गान प्रकार है उसका यही उद्दिष्ट है। और राग तो दिखाई देता है लेकिन कभी कभी उसके अर्थ के कारण राग का नियम एकदम काटेकोर ऐसा पालन नहीं जाता है,
1: सटीक तरीके से उसका पालन नहीं होता।
2: शब्दों का भावनिक आशय समृद्ध करने के लिए
1: जी, जी।
2: राग के बाहर के स्वर लाए तो उसमें कुछ हमने गैर किया ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: उपशास्त्रीय गान में शब्दों को भी महत्व है उतना ही जितना स्वर को भी है
1: जी।
2: स्वर वाक्य शब्दों का हाथ पकड़ के ही आता है। बोल बनाओ और बोल बाट
1: जी,
2: ये इस स्वर वाक्य का एक अलग विशिष्टता है। बोल बाट यानी क्या, लय के अंग से जो आती है ठुमरी वो बोल बाट। बोल बनाओ यानी स्वर के अंग से आती है ये ठुमरी।
1: अच्छा,
2: ठुमरी है तो थोड़ी संत गति भारदस्त उसका स्वर लगाओ, और दादरा अगर है तो थोड़ा सा चंचल और खेल करी ऐसा होता है
1: जी। जी,
2: इस घाट के एक प्रस्तुति में आलाप के माध्यम से शब्दों को पकड़ के
1: जी,
2: उसको पकड़ के आने वाले स्वर वाक्य और इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण तान सरगम इत्यादि प्रकार को यहाँ कुछ भी वाव नहीं है।
1: अच्छा,
2: राग जब दूसरा स्वर ठुमरी में आता है राग का अलग का स्वर
1: जी,
2: तो हम धीरे से इसको अंदर आने देते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसको हम मिश्र कहते हैं, मिश्र गारा।

0: ऐसा करके वो उसको अंदर लेता है और
1: जी, जी, जी, जी.
0: उस अंग से अंदर आता है. सुगम और शास्त्रीय प्रकार सादर करते समय आवाज का जो पोत ढंग जो हमें बदलना पड़ता है, शब्द फेंक विशिष्ट पद्धति में करनी पड़ती है. स्वरोच्चार और स्वर बांधनी ये भी अलग ढंग से करनी पड़ती है. इसीलिए आलाप ख्याल का और ठुमरी का ये बात सुनने वाले के समझ में आते है, ठुमरी है या आलाप है. ये नॉर्मल ठुमरी का ये जो हो गया
1: जी, जी, जी.
0: अभी किराना वाली ठुमरी और इसमें क्या फर्क है ऐसा आप अगर पूछे, भाव प्रधानता स्वर प्रधानता ये किराने घराने की ठुमरी की एक अभिव्यक्ति दिखाने की विशेषता है.
1: जी, जी.
0: शुद्ध मधुर और सुरीले स्वरों का प्रयोग जो होता है इसी घराने के प्रमुख विशेषता से ये भाव आया हुआ है.
1: अच्छा.
0: धीमी गति से प्रस्तुत की गई ठुमरी
1: जी
0: उसका गायन अपेक्षाकृत शांत संयमित शैली में किया जाता है जिससे भाव स्पष्ट रूप से उभारते हैं. कर्ण स्वरों का प्रयोग मींड स्वर कर्ण स्वर मुरकी तथा सूक्ष्म स्वर लगाव जो सब हमारे किराने घराने की शैली है
1: जी.
0: किराना घराने में मुख्यतः बोल बनाओ की ठुमरी यानी गायन के साथ जिसका अर्थ के साथ भाव के साथ इसका विस्तार होता है
1: जी.
0: और ठुमरी में गीत के बोलों का भाव जो विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है. अभी हम खास ठुमरी सुनेंगे खान साहब अब्दुल करीम खां की और ये बहुत ही गारा राग में है
1: जी.
0: जादू भरे नैन वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी ढंग से गाई है.

0: जयंत जी
1: जी,
0: ठुमरी की प्रस्तुति अत्यंत मधुर, कोमल और भावपूर्ण होती है। आपने तो अभी सुन ली
1: जी।
0: इस घराने की ठुमरी में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, वो किराना घराना है।
1: वाह।
0: प्रमुख कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर प्रभात रे, विदुषी माणिक वर्मा, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व आदि कलाकारों ने किराना घराने की ठुमरी और उसकी विशिष्ट पहचान लोगों तक पहुंचाई है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभा अत्रे ने ठुमरी के सौंदर्य और भाव पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं ने गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दादरा है, लेकिन उसका थोड़ा ढंग बदल के मैं गाती हूँ।

0: सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति और मधुरता को अधिक महत्व दिया जाता है।
1: जी जी जी,
0: ये तो इसका थोड़ा अनुभव अगर आपको अभी इस दादरा में आया तो पावन हो गई मैं।
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मन्ना डे और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे संगीत सम्राट तानसेन। फिल्म का ये गीत स्वामी हरिदास ने इसे लिखा, एस एन त्रिपाठी का संगीत। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया। आम्रपाली फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

आशा भोसले और साथियों की आवाज में तुलसीदास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जीएस नेपाली के बोल चित्रगुप्त का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पटरानी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीता दत्त की आवाज में शर्त फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। आइए सुनते हैं गीता दत्त को श्रीमती 420 फिल्म के इस गीत में जानिसार अख्तर ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: छोड़ के कहा जा

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हम है राही प्यार के, बस कुछ ही पलों के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: भाई बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत।
1: जाना है तो जाओ।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे बंधन फिल्म का ये गीत। इसे लिखा इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

सीता और गीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, हम है राही प्यार के। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अंदाज फिल्म से ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

अंदाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना

0: जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य से होकर जहाज़ों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता

0: आस्था ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश

0: में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा। आज संसार में करीब 7000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है, यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है, तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों।

0: एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेश
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराएं नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

ABCD फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और विशाल ददलानी की आवाजों में, मयूरपुरी के बोल सागर जिगर का संगीत। और हर वर्ष जब हम गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं तो यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि अगले बरस वो जल्द से जल्द आए। और आज से गणेश चतुर्थी शुरू है, आज है गणेश चतुर्थी और अब 11 दिनों तक ये त्यौहार गणेश पूजा का मनाया जाएगा। देश भर में ऐसा मनाया जा रहा है ये त्यौहार, और ऐसा लगता है कि हर साल जब श्री गणेश को हम विराजमान करते हैं तो हम सभी अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई गति और नए उत्साह से भरते हैं, जो साल भर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में हमें बल देता है। तो बस इस उत्सव में रंगने का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, इसका पूरा आनंद लीजिएगा।

विशाल ददलानी और साथियों की आवाज में बैंजो फिल्म का गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत। और जबकि गणेश पूजा का माहौल है और उत्सव का जब भी माहौल होता है तो सबसे ज्यादा मिठाई भी गणेश जी के बहाने ही हम खा लेते हैं कि भाई प्रसाद है खाते जाएं, लेकिन नई ऊर्जा इस उत्सव से तो हमारे मन में भरी रही है, किंतु अपने मन और सेहत का ख्याल रखना भी हमारे लिए जरूरी है, तो बस इसका भी ध्यान रखिएगा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

शाशा तिरुपति की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, ए आर रहमान का संगीत। आज है 14 सितंबर और आज के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 में को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार 1953 में 14 सितंबर के दिन आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया गया। तो एक ऐसी भाषा है हिंदी जिसमें संसार की कई भाषाओं का सहज समावेश हमें मिलता है और हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भेदभाव नहीं मिलकर चलना सिखाती है। तो बस अपनी भाषा पर गर्व करें और हिंदी पढ़ना लिखना न जानने पर नहीं बल्कि जानने पर गर्व करें।

0: नीरजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रसून जोशी के बोल, विशाल खुराना का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की

0: तनकही कहानियाँ
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और उत्सव का माहौल है तो मन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी तो ये सबके साथ मिलकर झूमता है लेकिन कभी कभी गुमसुम हो जाता है। किसी ने पूछा नहीं, बुलाया नहीं, या मान सम्मान में कुछ कमी रह गई तो न जाने ऐसी कितनी बातें होती हैं इस बीच में जो मन को विचलित कर सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो सोचेंगे, पर पहले तो एक गीत सुन लेना चाहिए।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी डब्ल्यूपीसी वॉल पैनल्स सीलिंग्स एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स सब एक ही छत के नीचे
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट एसयू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़ कॉल 9876277700
2: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
3: नहीं यार मैं नहीं लाना
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
3: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में गाँव की मिट्टी में
6: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं
5: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
6: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज
5: अपने शहर की खास जगह परंपरा प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
6: मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें
5: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं तो कहिए अपने शहर अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी
6: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे थे कि उत्सव में खास तौर से मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं और किसी किसी के घर भी जाना होता है, सबसे मिलना होता है, लेकिन माहौल जो भी हो सबसे जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना क्योंकि अगर आपका मन खुश है, हल्का है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। One more time.

शाल मलिक होलगड़ी की आवाज में आप सुन रहे थे तुम्हारी सुलू फिल्म का ये गीत, वायु ने से लिखा, तनिष्क बागची का संगीत। और हम बात कर रहे थे कि मन जो है इसी तरह से हल्का होकर उड़ना चाहता है, बहुत सारी चीजों को महसूस करना चाहता है। तो अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसे बांध कर दिल से ना लगा कर बैठ जाए, क्योंकि इससे तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी दोस्त से आप ये बात साझा कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आपको जिनसे आप वो बातें कर सकते हैं तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, किसी पेज पर लिख कर फाड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि जितने जल्दी मन से वो बातें आप निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका मन हल्का होगा और आपको जीवन में आनंद आने लगेगा।

सनम रे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और जीत गांगुली का संगीत। कुछ इस तरह से छोटे छोटे तमाशे हमारा मन भी करता है, लेकिन मन का माहौल बदलने का ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि गणेश पूजा शुरू हो गई और खास बात इसकी ये है कि आपको झूमने नाचने गाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है और इससे मन बड़ा खुश रहता है।

0: नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म से गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ।

0: ਜੇਕਰ HIV ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ HIV ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं, समय हो गया है कार्यक्रम आज का अखबार का।
2: आज का अखबार,
1: नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी मित्र शालिनी। हमारे सभी दोस्तों को, सभी हिंदी भाषियों और हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। जब भी हमें दिल से बात करनी होती है तो वो अपने आप हिंदी में ही निकलती है। फिर चाहे आप दुनिया भर की भाषाओं के ज्ञाता क्यों ना हो, चाहे आपको अंग्रेजी आती हो, फारसी आती हो, फ्रेंच आती हो, उर्दू आती हो, लेकिन जब दिल से कोई बात करनी होती है तो अपने आप अपनी मातृभाषा यानी हमारी प्यारी हिंदी जबान पर आ जाती है। और हिंदी की विशेषता देखिए कि जब भी हम अपने कोई भाव हिंदी में व्यक्त करते हैं, हर एक भाव के लिए अलग शब्द है। हर एक भावना को आप बहुत ही अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में क्या शब्द आपको प्रयोग करना है वो भी हिंदी की ही विशेषता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं और बहुत ही सुंदर उदाहरण है, सुनिएगा। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पांव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़ो तो पद, प्रभु के हूं तो पाद, बाप की हो तो लाद, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध लो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी, खेलने के लिए लंगड़ी और अंग्रेजी में सिर्फ लेग। तो ये है हमारी हिंदी की विशेषता कि किसी भी शब्द को कहां पर हमें प्रयोग करना है वो हमें मात्र हिंदी ही दे सकती है। और हिंदी की अगर हम दोस्तों बात करें तो आज के समय में हिंदी को हम कितना प्रयोग कर रहे हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। और इसको मात्र एक दिन तक सीमित ना कर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि प्रतिदिन हिंदी का हम प्रयोग करें, चाहे वो हम अपने घर की बात करें, अपने कार्यस्थल की बात करें, हिंदी में बात करें, हिंदी बोलने में हिचकिचाएं ना, हिंदी को प्रयोग करने में शर्माएं ना, क्योंकि हिंदी हमारी माँ की तरह ही है। जिस प्रकार हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं उसी प्रकार अपनी मातृभाषा हिंदी से भी उतना ही प्रेम करें। और आज के दिन आप सबको संदेश भेज सकते हैं हिंदी में, हिंदी दिवस पर, और प्रोत्साहन भी दे सकते हैं लोगों को, आप प्रेरित भी कर सकते हैं हिंदी में बात करने के लिए, और उसके लिए शुरुआत अपने आप से करें। और साथ ही साथ दोस्तों, आज का दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की भी, और आज से ही शुभारंभ हो जाता है 10 दिन के गणेश उत्सव का। और बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर जो गणेश उत्सव की धूम होती है वो तो हम सभी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते हैं। और आप में से जो भी कोई महाराष्ट्र गया होगा इन दिनों, आप तो साक्षी रहे होंगे कि वहां पर गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में बप्पा को बड़े ही प्यार से लाया जाता है। तो आइए मिलकर बोलते हैं जय श्री गणेश।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
3: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
4: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर और यह है कार्यक्रम आज का अखबार। इस कार्यक्रम में अब आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। राष्ट्रीय समाचारों में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न, 2027 में चीन करेगा आयोजित। जिनपिंग की मौजूदगी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल्स हथियार बने तो विकास रुकेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में 15 देशों के नेताओं के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। ओमान तट पर ऑयल टैंकर पर हमला, 13 भारतीय क्रू मेंबर बचाए गए, एक लापता, भारत ने इस हमले की निंदा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 2029 तक 21 राज्यों में यूजीसी करेंगे लागू। भूस्खलन से चौरबासा मार्ग बंद, केदारनाथ यात्रा रुकी। यूरोप को अब सस्ते में 2.5 लाख कारें बेच सकेगा भारत। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी डीजल ईंधन ठिकानों पर हमले रोके यूक्रेन, बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वर्ष बाद ब्रिटेन टूटने के कगार पर वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में रेफरेंडम की तैयारी। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। क्रिकेट और हॉकी में भारत ने गाड़े झंडे, एक दिन में जीते 3 एशिया कप। महिला एशिया कप T20 में भारत 8वीं बार जीता, लेकिन पाक के नकवी से फिर नहीं ली ट्रॉफी। वहीं जूनियर एशिया कप हॉकी में महिलाएं लगातार 3री बार तो पुरुष रिकॉर्ड 6ठी बार जीते। तो ये थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कुछ खेल समाचार।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज का अखबार। और ये जो अगली खबर है, ये है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें कैमरा से बहुत प्यार है। भाई, डिजिटल क्रिएटर्स की बात करें या फिर इन्फ्लुएंसर्स बोलें, तो आजकल के समय में हम देखते हैं कि हर कोई अपना फ़ोन उठाकर झट से वीडियो बना लेता है और फट से वीडियो या रील अपलोड कर देता है। तो ये आजकल है ट्रेंड में और इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है हमारी सरकार, और इसीलिए उन्होंने आप सबको दिया है एक चैलेंज। तो क्या आप तैयार हैं ये चैलेंज लेने के लिए? हम बात कर रहे हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में। अपने ज़िले की कहानी आपकी ज़ुबानी। हमारे देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपनी ही कहानी है, और इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के ही उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की है शुरुआत। और इस पहल के तहत देश के उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स को, जो कि आप भी हो सकते हैं, अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से, यानी कि आप क्रिएटिव तरीके से, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसका अवसर आपको दिया जा रहा है। यानी कि आप अपनी पिक्चर के डायरेक्टर भी होंगे, उसमें आप एक्टर भी हो सकते हैं, और उसमें आपको क्या शामिल करना है ये आपके ऊपर है। और इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। तो अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये भी बता देते हैं कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कैसे करना है।

आपको करना क्या है कि माय वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर और उसके बाद लॉग इन करना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आपने दर्ज करना है, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और उसको सबमिट कर दें। 1 से 3 मिनट की उसकी ड्यूरेशन हो सकती है। और खास बात, चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है, तो आपके पास मौका है और ये सुनहरा मौका है। ध्यान दीजिए, एंट्रीज सिर्फ 30 सितंबर यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक ही स्वीकार की जाएंगी, तो देर मत कीजिए। अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, वहां की कोई परंपरा, कोई भी प्रतिभावान अगर व्यक्ति है या फिर कोई ऐसी कहानी जो आपको लगता है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसे कैमरे में कर लीजिए कैद और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। क्योंकि हमारा देश भारत, इसकी असली खूबसूरती इसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है, जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री।

0: ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार और कार्यक्रम में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। पहले ट्राइसिटी की खबरें। बारिश ने थामी ट्राइसिटी की रफ्तार, भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी। एनडीए की परीक्षा के लिए 20 केंद्रों पर 8,000 लोगों ने दी परीक्षा, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। सेक्टर 19 स्थित सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं ऐसा डिवाइस जो जीपीएस के साथ सिम और मोबाइल नेटवर्क से भेजेगा लोकेशन। चंडीगढ़ में वेद मंत्रों के बीच आज विराजेंगे गणपति बप्पा। महाराष्ट्र मंडल मनाएगा 62वां गणेशोत्सव। 14 से 20 सितंबर तक होंगे कार्यक्रम। और अब बारी क्षेत्रीय समाचारों की। पंजाब में बिजली संकट बरकरार। इंडस्ट्री में औसतन 13 घंटे और घरों में 55 मिनट से 1.5 घंटे तक के लग रहे कट। लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में अंपायर मैनेजर बनेंगे जालंधर के संघा, ऐसी उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय बने। हरियाणा पुलिस में 30% पद खाली, 6 महीने में होगी 15,000 की भर्ती। और किशाऊ बांध पर लगेगी 6 राज्यों की मोहर। हरियाणा को 836 क्यूसेक पानी मिलेगा, समझौता कल होगा। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस। और श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में अब समय जो है वो कह रहा है कि बात इतनी ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज हिंदी दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आज हमारा जो लाइव फोन इन प्रोग्राम 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हेलो चंडीगढ़, उसमें कार्यक्रम का विषय रहेगा हिंद का गौरव हिंदी। इस विषय पर होंगी बातें हमेशा की तरह, तो हमें इंतजार रहेगा आपकी फोन कॉल्स का। और अब मैं शालिनी आपसे कार्यक्रम आज का अखबार से लेती हूं अनुमति, इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आपका आज का दिन हो बहुत शुभ। आप रहें हैप्पी हैप्पी। नमस्कार।
2: आज का अखबार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली

0: घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: कदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि।
3: गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। पुणे के भव्य और ऐतिहासिक गणेश उत्सव का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य 5 गणपति सहित विभिन्न गणेश मंडलों की आकर्षक सजावट, ढोल ताशों की गूंज और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अगले 10 दिन तक पुणे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल रहेगा। इस वर्ष कई गणेश मंडलों की ओर से सामाजिक संदेश और जन जागरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का नियोजन किया है। नगर निगम की ओर से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माधव जाय भाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
2: गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि।
0: क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीबी राधा कृष्णन ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे अब से थोड़ी ही देर बाद।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं शालिनी। दोस्तों, ये एक लाइव प्रोग्राम है और इसमें हम आपसे जुड़ते हैं सीधे फोन के जरिए। और इससे पहले कि हम अपनी बात कहें, हमारे श्रोता पहले से ही फोन कॉल्स पर आ गए हैं, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात कहेंगे कि आज का जो विषय है, वैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो हिंदी दिवस है आज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंद का गौरव हिंदी, ये है हमारा आज का विषय। आप हिंदी को कितना प्रेम करते हैं, हिंदी को लेकर आपकी क्या सोच है, और आज के समय में हिंदी का कितना प्रयोग हो रहा है, और हिंदी को हम अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में कैसे देकर जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। इस पर होगी बहुत सारी बातें। दोस्तों, आज के समय में अगर हम बदलते स्वरूप को देखें तो हिंदी भाषा में भी काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं। और किताबों में पहले हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, हम कॉमिक्स पढ़ते थे वो भी हिंदी में हुआ करती थी, हालांकि अंग्रेज़ी में भी आती थी, लेकिन अधिकतर कॉमिक्स या किताबें जो थी वो हिंदी में ही आया करती थी। हमारा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, एक दूसरे से आदान प्रदान, हर चीज़ में हिंदी शामिल हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला और भाषा का रूप भी बदला, और साथ ही साथ हिंदी को कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिल पाई, वो स्थान नहीं मिल पाया जो कि हमारी प्यारी हिंदी जो है जहां पर होनी चाहिए। तो चलिए इस विषय पर आज आपसे जानते हैं कि आपकी क्या सोच है, और पहली फोन कॉल देखते हैं कि कौन है हमारे आज के पहले श्रोता जो इस पर बात करेंगे। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
0: सुप्रभात जी,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपने इतनी दूर से कॉल लगाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉर्थ ईस्ट से आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप हिंदी में कितने लोगों को बात करते हुए देखते हैं, और वहाँ हिंदी की क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे
1: जी? खासकर देखिए, यहाँ पर हिंदी तो ज्यादा नहीं चर्चा में है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में देखिए दो लैंग्वेज चलते हैं, एक बंगाली है जो हमारे यहाँ का जो चलता है, और दूसरा है जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है कोकबरा, वो है। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो असम में देखिए असमीज बोलते हैं, मिजोरम के मिजोरमी जो लैंग्वेज है, या फिर नागालैंड की नागालैंड की जो भाषा है वो है। मतलब हर राज्य का अलग अलग भाषा है, लेकिन क्या है कि जब से हम लोग आकाशवाणी जुड़े हैं तो आकाशवाणी में जो भी कॉलर फोन करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। और बहुत देखिए, आप मेरी हिंदी आपको सुनेंगे तो आप, मैं त्रिपुरा में रहने वाला हूँ लेकिन हिंदी काफी क्लियर है, तो
0: जी बहुत अच्छी है जी।
1: जी जी जी, तो हमें अब इसमें गर्व होता है कि देखिए, हम भले ही अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषा से बात करते हैं, लेकिन जब हिंदी के बारी आती है तो हम जैसे एक सूत्र में बंधे होते हैं एक इस भाषा के दौरान। तो हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, और आज जैसे कि हिंदी दिवस भी है तो हमें बहुत ही गर्व फील होता है, क्योंकि इस हिंदी के जरिए देखिए हम बहुत दूर दूर से कोने कोने से सभी श्रोता से जुड़े हुए। जैसे शिमला से देखिए, मुझे आकाशवाणी चंडीगढ़ में जोड़ने वाला राकेश जी हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा है, तो उनको भी मैं गर्व से बोलता हूँ कि आज के उनका भी जो लैंग्वेज है वो पहाड़ी लैंग्वेज है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जी, तो इसी तरह से एक सूत्र में देखिए, देश के कोने कोने से सभी हम बने हुए हैं हिंदी भाषा के जरिए, और आज ही के दिन ये भाषा मनाया जाती है हिंदी दिवस के रूप में, क्योंकि देखिए 1949 में हमारे जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर जो दिया गया था स्वीकृति, और 1953 से ये राष्ट्रीय हिंदी भाषा के दिन आज के दिन से मनाया जा रहा है।
0: जी जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी जो है हम सबको जोड़कर रखती है, ठीक उसी तरह जैसे हम सभी माला के मोती हैं, और हिंदी वो धागा है जो उन सभी मालाओं के जो जितने भी मोती हैं उनको पिरो कर रखता है, तो हिंदी हम सबको साथ में जोड़कर रखने की भाषा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे आज बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी।
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।

0: नमस्कार जी
1: जी नमस्कार, हमारी बात किससे हो रही है?
0: मैं सुशील शर्मा ठियोग हिमाचल से बोल रहा था
1: जी। सुशील जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिंदी दिवस की।
0: हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं
1: आपको
0: आप सभी
1: भी
0: को,
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं जी।
0: मेरा तो यही कहना है कि हिंदी दिवस हम सिर्फ आज ही ना मनाएं, हिंदी को, हिंदी भाषा को आत्मसात करें
1: जी,
0: हिंदी की उपयोगिता समझे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है
1: जी,
0: लेकिन शायद इसे अभी तक जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा
1: जी
0: उस रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाए
1: जी। क्योंकि देखिए, उसका भी एक कारण है, हमारे देश की विविधता इतनी अधिक है, बहुत से राज्य हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं और वो भी उतनी ही सुंदर हैं, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया है
0: जी। जी जी जी, जी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है
1: जी,
0: क्योंकि दक्षिण पंथी जो है इन क्षेत्रों में मुश्किल आती है लोगों
1: जी,
0: को जो
1: जी.
0: है नॉर्थ ईस्ट में लोगों को जो है हिंदी भाषा को बोलने में या इस अपने सहज प्रवृत्ति में ढालने में, लेकिन फिर भी हमें प्रयास तो करने होंगे,
1: बिल्कुल करने होंगे जी।
0: मातृभाषा को जितना सहज रूप में हम सीख पाते हैं, हम इसमें सरकार को भी एक जरूरत है। चलो अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, हमें को युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है
1: जी,
0: प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है, इसमें इंग्लिश भी जरूरी है, बात नहीं है, बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी हमारी जो है मातृभाषा को भी हमें जो है इसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है इस भाषा को, क्योंकि हम क्योंकि बच्चे सबसे ये घर की भाषा है ना,
1: बिल्कुल मातृभाषा
0: पहले तो घर में ही सीखता है, सबसे पहले तो अपने जो है माँ बाप इनसे, पहली गुरु तो जो है माँ है। घर में हम जो हिंदी का प्रयोग करेंगे तो बच्चे सहज रूप से सीखते हैं, चीजों को सहज रूप से सीखते हैं
1: जी,
0: बच्चों को बताने के बजाय बच्चे खुद सीखते हैं जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं,
1: बिल्कुल।
0: इसमें सरकारों को भी थोड़ा सा प्रयास, हमको भी, सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है इस भाषा को, तभी जो है इस दिवस को मनाने की सही जो है क्या एक अपने स्वरूप को ये थोड़ा सा ये कर पाएगी। लेकिन हिमाचल की बात करूं मैं, हिमाचल में प्राथमिक विद्यालयों में जो है हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है, हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी है वहाँ पे, मीडियम के तौर पर वहाँ पे जो है हिंदी ऑप्शन ही नहीं बच्चों को, इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही है।
1: सुशील जी, देखिए ये एक इस समय जो एक बात है कि अंग्रेजी
0: जी
1: को जो प्राथमिकता हम लोग देते हैं,
0: हालांकि ये नीतिगत मामला है सरकारों के लेवल पर है, लेकिन ये विचार आप ये माध्यम है इसलिए मैंने ये बात उठाई है, क्योंकि अब प्राथमिक विद्यालयों में जबकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें कहा गया है कि मातृभाषा को हमने मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी है
1: जी, जो भी भाषा आपके वहाँ बोली जाती
0: है जो है हमारे कुछ इसमें विरोधाभास है ना, ऑप्शन ही नहीं बच्चों को, अंग्रेजी पढ़नी ही पढ़नी है, वो थोप रहे हम बच्चों पे।
1: सुशील जी देखिए, जो सरकारें करती हैं उसमें हमारा कोई बस नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं अपने घर परिवार में, अपने बच्चों से हिंदी में बात करें, स्वयं हम हिंदी का प्रयोग जितना कर सकते हैं वो करें, है ना, बच्चों को प्रेरित करें कि वो हिंदी का घर में जो भी समाचार पत्र आता है उसका पठन करें, तो अपने तरीके से अपने स्तर पर हम जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें, बाकी सरकारें जो करेंगी वो उनका काम है, वो उनका,
0: बिल्कुल ये नीतिगत
1: जी बिल्कुल
0: है, इसमें तो एक व्यापक जो है सामूहिक एक मंथन की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने स्तर पर जो
1: अपने स्तर पर जरूर
0: जी।
1: बहुत अच्छा लगा सुशील जी, आपने अपने विचार भी रखे और बहुत सी अच्छी बातें भी हमसे शेयर की जो आपके मन में है,
0: क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, पत्रकारिता से 2009 से, तो अपने हम भी प्रयास करते हैं जी पत्रकारिता में जितना हो सके अपने जो है विचारों को, भावों को लोगों तक पहचाने, लोगों
1: बिल्कुल, और हमारे आपके जैसे ही लोग हैं सुशील जी, जो हिंदी को दिल से प्यार करते हैं और बड़े अभिमान के साथ अपनी हिंदी को हम आगे रखकर चलते हैं कि हमारी हिंदी सबसे आगे है, किसी से भी पीछे नहीं है,
0: भाषा को बोलने में मतलब गर्व महसूस करें,
1: बिल्कुल,
0: मैं तो ये कहता,
1: और हमें गर्व है अपनी हिंदी पर, जैसे हमें अपने भारत पर गर्व है वैसे ही हमें अपनी हिंदी पर भी गर्व है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो
0: जी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
2: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

0: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं।
1: शालिनी जी को नमस्कार।
0: आपको भी हमारा नमस्कार।
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
0: बिंद्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज तो बहुत अच्छा शुभ दिन है
0: जी।
1: हिंदी दिवस की सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो और गणेश चतुर्थी की भी बधाई हो
0: जी। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बिंद्रा जी। और हिंदी को लेकर आपके क्या विचार हैं?
1: हिंदी ऐसा है कि हिंदी हमारे देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा है, और इसका जो राष्ट्रीय भाषा 1949 में घोषित की गई थी
0: जी,
1: और इसका एक अभिप्राय इससे ये निकलता है कि हम सभी देशवासी एक हैं, एक ही भाषा से जुड़े हैं
0: जी।
1: क्षेत्रीय भाषा भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा जरूरी है, वो है हिंदी
0: जी।
1: तो हिंदी का हम सम्मान करें, हिंदी बोले, जितना हिंदी में लिखे, हिंदी पढ़े, हिंदी को बढ़ावा दें
0: जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि हिंदी में लिखें, क्योंकि बिंद्रा जी आजकल हम ये देखने में आ रहा है कि हम बोल तो लेते हैं हिंदी, लेकिन लिखने में जो आजकल, अगर विशेषकर हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी की यंग जनरेशन है, वो हिंग्लिश लिखते हैं, ना ही वो हिंदी है और ना ही वो अंग्रेज़ी है। यानी कि वो लिखेंगे अंग्रेज़ी में, होगी वो हिंदी, तो वो बड़ा ही अलग सा एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि हिंदी को हिंदी में नहीं लिखते हैं और अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में नहीं लिखते हैं, वो हिंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं।
1: विडम्बना ये है मैडम कि हम घरों में भी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलते हैं
0: जी।
1: हमें कुछ लगता है कि शर्म महसूस होती है कि हिंदी हम बोलते हैं तो लोग ये ना समझे कि हम बैकवर्ड हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती
0: जी।
1: और दूसरे देशों में ये देखा गया है कि अपनी जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा से जुड़ाव बहुत अधिक है, और हर तरह की पुस्तकें, साइंस की हो, रिसर्च पेपर हो, सब कुछ उनकी भाषा में उपलब्ध है
0: जी।
1: तो हमारी सरकार भी प्रयासरत है, IAS के इंटरव्यू भी हिंदी में होने लगे हैं
0: जी।
1: तो ये पहले जो था कि इंग्लिश में ही होंगे तो बच्चों की मजबूरी हो जाती थी, इंग्लिश की तरफ झुकाव उनका ज्यादा हो जाता था।
0: बिल्कुल बिंद्रा जी, और कई बच्चे जो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, वो सिर्फ भाषा की कमी की वजह से, कि उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, कहीं पिछड़ भी जाते थे।
1: तो ये सरकार का तो प्रयास है, और हम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है देश की भाषा को आगे बढ़ाएं और अपनी भाषा से प्यार करें। क्षेत्रीय भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का उचित सम्मान होना चाहिए।
0: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बोलियां जो हैं वो बहुत सारी होती हैं और हर कुछ किलोमीटर पर अलग बोली अपना रूप ले लेती है, लेकिन भाषा जो हिंदी है उसे प्यार हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रभाषा है, और हमारे जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं उन सभी ने हिंदी को बहुत प्रेम दिया है, और ये भी कहा है कि एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है, क्योंकि हमारी पहचान है हिंदी।
1: मैडम मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, टैगोर थिएटर में हिंदी काव्य सम्मेलन होता है साल में एक दो बार
0: जी,
1: तो हास्य कवियों को सुनने का जो मौका मिलता है उससे पता चलता है कि हिंदी कितनी रुचिकर भाषा है।
0: बिल्कुल,
1: और इसको सुनकर कितना आनंद मिलता है
0: जी। और हिंदी में जो आनंद और रस है ना बिंद्रा जी, वो किसी भी भाषा में नहीं है
1: जी। जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा बिंद्रा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और हम यही हमारी यही सोच है और प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़े।

0: और आपने जो बातें कही, आपकी बातें सुनकर किसी को कुछ समझ में आ जाए हिंदी की जो महत्व है हिंदी का हमारे जीवन में, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम हिंदी जो है उसे शुद्ध हिंदी को हम कैसे छोड़कर जा रहे हैं वो भी हम पर बहुत निर्भर करता है। तो
1: जी जी
0: आपका
1: मैम,
0: बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिंद्रा जी।
1: थैंक यू मैम।
0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताइए
1: नमस्कार जी,
0: जी। नमस्कार,
1: मैं बंसीलाल हाँ जी, गांव तेजा मोड़ी, जिला अंबाला जी। बंसीलाल
0: एक बार फिर से अपना नाम बताइए जी।
1: जी,
0: बंसीलाल जी, जी बंसीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: हमारा गांव है तेजा मोड़ी,
0: जी, जेजा मोड़ी।
1: अंबाला जिले में, अंबाले में।
0: हाँ जी बंसीलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज हिंदी पर, हमारी
1: देखो हिंदी
0: प्यारी
1: का
0: हिंदी
1: तो
0: के
1: जो
0: लिए?
1: अपनी मातृभाषा है जी,
0: जी
1: इसके सम्मान करो, इसका प्रेम करो,
0: जी
1: इसको वो सीख लो, अंग्रेजी सीखो जरूर सीखो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन अपनी हिंदी भाषा ना छोड़ो जी।
0: अपनी जड़ों को ना छोड़े, है ना
1: हाँ, ये अपनी मातृभाषा है ना, जो इससे प्यार करो
0: जी,
1: जी।
0: अपनी
1: आप तो यही कहना
0: मातृभाषा
1: जी,
0: से।
1: बहुत
0: जी
1: कुछ कहेंगे जी, वैसे बहुत सारे लिसनर आए, सबने अच्छे विचार रखे जी।
0: जी
1: हाँ, यही कहेंगे भी अपनी हिंदी भाषा रखो अपनी सामने।
0: बिल्कुल, हिंदी भाषा को संभालना संजोना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारी भाषा को अगर हम नहीं संभालेंगे, अपनी माँ मातृभाषा को, तो और कौन संभालेगा?
1: फिर विदेशों का जोर हो जाएगा इसके ऊपर। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम कितनी भी
1: जी,
0: भाषाएं सीख लें, वो हमारे लिए जो है वो आवश्यक भी है कि हम नई नई भाषाएं सीखें, लेकिन अपना जो जड़ें हैं उसे ना भूलें,
1: हाँ
0: अपने जो संस्कृति है उसके हमेशा पास रहें।
1: हाँ सीखनी जरूर चाहिए यार इस
0: जी
1: बार को,
0: जी बंसीलाल जी,
1: जितना
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: बाहर
0: जी।
1: जाते हैं ना, बाहर अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं लोग।
0: हाँ जी, और हमारे यहाँ पर भी तो ऐसा होता है ना कि अंग्रेजी में बात करके हमें बड़ी शान महसूस होती है कि हमने तो बहुत
1: हाँ,
0: बड़ी बात कर ली
1: दफ्तरों में। हाँ जी, हाँ
0: जी, और कोई अंग्रेजी में बात करता हुआ अगर हमें नजर आ जाता है, या कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छी
1: हम
0: अंग्रेजी बोलता है
1: शर्मिंदा महसूस करें अभी, मैं अंग्रेजी नहीं आती थी,
0: जी, लेकिन उसमें शर्मिंदा महसूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
1: हमें गर्व है, हम हिंदी जानते हैं।
0: बिल्कुल, हमें गर्व है क्योंकि आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अच्छी हिंदी भी जानते हैं,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ,
0: आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग बेशक मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी हिंदी बोलने
1: हिंदी
0: वाले
1: बोलने वाले कम मिलेंगे।
0: कम
1: ठीक
0: मिलेंगे। तो अगर आपको
1: है
0: अच्छी
1: जी,
0: हिंदी आती है तो बहुत ही ज्यादा अभिमान की बात है, गर्व की बात है
1: ठीक है जी, बहुत अच्छा विषय रखे जी आज, ये
0: जी।
1: अपना हिंदी हिंदी विषय है ना आज, बढ़िया हिंदी
0: जी हिंदी
1: दिवस
0: दिवस है और
1: है। हाँ
0: हिंदी
1: जी,
0: का मान सम्मान करें, बस यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी,
1: थैंक यू
0: धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। और श्रोताओं, आज है हिंदी दिवस और इसीलिए आज हमने आज जो कार्यक्रम का विषय रखा है वो है हिंद का गौरव हिंदी। और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। जी कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में?
1: मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका।
0: जी
1: मैं एक दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ।
0: जी
1: हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक तो कई स्कूल ऐसे हैं यहाँ पर सारे टीचर या प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने हिंदी में बात नहीं करनी,
0: जी
1: सिर्फ इंग्लिश में ही करनी।
0: जी
1: तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए।
0: जी
1: ठीक है, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बात करो। और कोई सब्जेक्ट जो इंग्लिश में है, अब दोपहर को बच्चों ने खेलना है या गेम पे जाना है या आपस में बात करनी है तो उस समय भी वो अपनी लोकल लैंग्वेज में तो बात कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: और दूसरा, घर पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन पेरेंट्स ने लगा रखी है।
0: जी घर पर तो बहुत शान समझी जाती है कि हम हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश में बात करता है और इंग्लिश में ही जवाब देता है। और हमारा बच्चा अगर इंग्लिश में बात कर ले सबके सामने तो खासकर पेरेंट्स के लिए जो भी अभिभावक हैं वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा है।
1: वही मैं कह रहा हूँ जी, अब हिंदी की भी तो शान समझनी चाहिए ना जी, अब टाइम बदल गया है।
0: बिल्कुल। और देखिए हम जहाँ अपनी हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं वहीं विदेशी हमारी हिंदी को गले लगा रहे हैं।
1: गले लगा रहे हैं
0: जी, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो।
1: बदल गया है जी। मैं आपको एक छोटी सी इंस्टांस बताता हूँ।
0: जी
1: कोई पहले इधर से हिंदी पढ़ के गया हुआ था, वो फिर काफी देर के बाद पंजाब में आया। तो पंजाब में उस समय जो अपने माइलस्टोन होते हैं ट्रेवल कर रहे हैं रोड पे,
0: जी
1: वो पंजाबी में थे।
0: जी
1: तो वो कहने लगा भी हिंदी इंडिया की हिंदी बदल गई है, क्या बात है।
0: जी
1: तो वो पढ़ तो सकता था, जैसे अमृतसर लिखा हुआ ज्यादा फर्क तो नहीं होता, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं जलंधर है,
0: कुछ कुछ शब्दों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
1: तो उसने फिर भी मतलब हिंदी आती थी पंजाबी से भी उसने पढ़ लिया जलंधर है। दैट वाज हिज डेडिकेशन टू द लैंग्वेज।
0: जी देखिए हिंदी हम कहीं भी जाते हैं ना, आप विदेश में चले जाएं, अपने देश में कहीं पर भी चले जाएं, अगर कोई व्यक्ति आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो जहां पर कोई और भाषा बोली जाती है और कहीं से आपके कान में हिंदी के दो शब्द पड़ जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि अपना कोई मिल गया है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: तो हिंदी में वो भाव है, वो अपनेपन का भाव है, वो माँ जैसा, जैसे माँ सबको गले लगा लेती है अपना बना लेती है, वही बात हमारी हिंदी में भी है। और हिंदी बहुत ही सुंदर भाषा है, हर शब्द का एक अलग अर्थ है और हर

0: जिसे कहते हैं ना कि हर सिचुएशन के लिए, हर स्थिति के लिए अलग अलग शब्दों का वर्णन किया गया है।
1: हमारा तो सूत्रधार है जी, बाहर कोई हिंदी में बात करे तो उससे 1 मिनट की बजाय हम 5 मिनट बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगता है ना कि हमारा कोई अपना ही है।
1: स्ट्रेंथ ऑफ दी हिंदी लैंग्वेज, भी मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है
0: जी। और ये देखिए, हिंदी को प्यार जैसे हम और आप करते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी को ऐसे ही प्यार करें और अपने जो पीढ़ी है आने वाली उनको भी ये प्यार जो है आगे हम देते जाएं, ताकि वो भी अपनी भाषा को संजो कर रखें।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ

0: ये बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी को ऐसे ही प्यार करें और अपने जो पीढ़ी है आने वाली उनको भी ये प्यार जो है आगे हम देते जाएं, ताकि वो भी अपनी भाषा को संजो कर रखें।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स और स्कूल्स को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम करनी चाहिए, लेट देम स्पीक देयर ओन लैंग्वेज आल्सो।
0: जी, अपनी भाषा को जो है वो प्रयोग जरूर करना चाहिए अपने घर में। और कहते हैं ना कि घर में आप अधिकतर समय घर में व्यतीत करते हैं, अगर
1: बिल्कुल
0: जो हमारे
1: बिल्कुल
0: माता पिता हैं वो हमसे हिंदी में बात करेंगे। और देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप पूरा एक वाक्य सिर्फ मात्र हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना
1: हाँ
0: कहीं
1: जी हाँ
0: उर्दू
1: जी
0: बीच
1: हाँ
0: में आ
1: जी
0: जाती है, कहीं ना कहीं
1: लिंक
0: अंग्रेजी बीच में आ जाती है, तो मिश्रित
1: लिंक
0: भाषा हो गई
1: लिंक
0: है।
1: पूरा नहीं बनता ना जी, लिंक नहीं बनता लैंग्वेज का,
0: जी, तो हम
1: सेंटेंस
0: सभी
1: का
0: को आदत
1: लिंक
0: हो
1: नहीं
0: गई है,
1: बनता।
0: हम सबको वो खिचड़ी भाषा की आदत हो गई है। शुद्ध हिंदी बोलना बड़ा बड़ा ही मुश्किल हो गया है सभी के लिए।
1: चलिए
0: लेकिन
1: लेट्स
0: चलिए
1: होप फॉर द बेस्ट
0: जी,
1: जी,
0: प्रयास
1: हिंदी को
0: करते
1: बढ़ावा
0: रहेंगे।
1: मिलेगा। हाँ
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी, बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया कॉल के लिए।
1: शुक्रिया।
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: हेलो,
0: हेलो
2: नमस्कार जी,
0: जी।
2: मैं रेणु सुग्रवाल बोल रही हूँ, चंडीगढ़ 51 सेक्टर से।
0: जी रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप और आज क्या कहना चाहेंगी हिंदी दिवस पर?
2: हिंदी तो मैं कहती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ,
0: जी
2: और दूसरे नंबर पे मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई हूँ।
0: जी
2: तो मैं बच्चों के पास बाहर भी जाती हूँ ना, वो इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे अब ग्रैंड सन है या डॉटर इन लॉ है, तो मैं हिंदी में जवाब देती हूँ, समझ जाती हूँ इंग्लिश,
0: जी
2: बट मैं उनको इंग्लिश में जवाब ना दे पाती हूँ ना देती हूँ। अगर मुझे कुछ आता भी होगा ना, मैं तब भी नहीं बोलूंगी।
0: जी
2: मैं अब कल की बात बताती हूँ, कल जैसे अब हमारे मोदी जी ने भी देखी है, ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है उसमें टोटली उन्होंने अपनी जो भाषण दिए है ना, हिंदी में ही दिए है।
0: जी
2: अब वहां पर इंग्लिश समझने वाले ज्यादा थे, हिंदी समझने वाले सिर्फ हमारी कंट्री के ही लोग थे,
0: जी
2: बट उन्होंने हमारे देश की आन बान और शान को ऊंचा रखते हुए अपनी मातृभाषा को ही एक जरिया बनाया लोगों तक पहुंचाने का,
0: बिल्कुल
2: फॉरेन के लोगों को।
0: जी
2: और दूसरे नंबर पे मेरी पोती है, अब हिंदी है तो पूरी हिंदी में बात कर दूंगी। मेरी एक पोती है, 6 प्लस की है, वो
0: जी
2: इंग्लिश मीडियम, आजकल सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं,
0: जी
2: तो मैं उसके साथ हिंदी में बात करती हूँ। मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि बेटा घर में तो चलो हिंदी चल जाती है, अब जब आप बाहर जाओगे स्कूल में तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो वो मेरे को बड़े अच्छे मासूमियत से एक जवाब देती है, दादी मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं हिंदी में ही बात करूंगी आपसे। तो
0: जी, अच्छी बात है।
2: मैं
0: देखिए, आजकल बच्चों का ये बोलना बहुत बड़ी बात है, और अंग्रेजी तो उन्हें आ ही जाएगी रेणु जी, देखिए, क्योंकि वो
2: आई
0: उन्हें सीखनी ही
2: जाएगी,
0: पड़ेगी, क्योंकि वो आवश्यकता है ना,
2: बिल्कुल
0: कहीं भी
2: बिल्कुल
0: काम करना है उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी। हमारे देश में अंग्रेजी इतनी ज़्यादा बोली जाती है, इतनी अधिक बोली जाती है, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन हिंदी को
2: बिल्कुल
0: पीछे ना छोड़ें।
2: नहीं छोड़ते हम,
0: जी
2: मेरे घर में तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो मेरे बच्चे भी जो है, अब एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक फॉरेन में सेटल है, तो
0: जी
2: वो भी गोरों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में रहते हैं, तो वो उनको अपनी, हमारा जो इंडियन संस्कृति है ना, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में उनको बहुत कुछ समझाते हैं। अब हमारा इंडियन खाना जो है,
0: जी
2: पहनावा है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि अब बाहर वाले लोग जो है ना, हमारे भारत को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है रेणु जी, और हम चाहते हैं कि हम सब भी अपने भारत को उतना ही महत्व दें जितने बाहर के लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
2: बिल्कुल,
0: कॉल
2: थैंक
0: के लिए
2: यू जी,
0: जी,
2: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
4: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
5: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
4: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
5: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
6: अरोड़ा प्लाईवुड
7: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
6: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड 0172 और देखते हैं कौन है अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताएं। जी नमस्कार। अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ी
1: आपको और सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप थोड़ी सी दूरी बना लीजिए अपने रेडियो से, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है।
1: मैडम मैं शिमला संकट मोचन से प्रदीप बोल रहा हूँ।
0: जी प्रदीप जी, कैसे हैं आप और हिंदी दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रभाषा है।
0: जी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जी
1: हिंदी जो है इसको मतलब अधिक से अधिक वो प्रयोग करना चाहिए हमें। जितना हम हिंदी में दूसरे को अपने मन की बात कह सकते हैं उससे दूसरे व्यक्ति को समझने में भी आसानी रहती है।
0: जी
1: अधिक से अधिक काम हिंदी में ही करना चाहिए। 1949 में देव

0: नागरी भाषा को हिंदी में अपनाया गया था
1: जी,
0: और उसके बाद ही हिंदी का प्रचलन आरंभ हुआ मैडम
1: जी।
0: आने वाली पीढ़ी को भी हमें हिंदी के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर एक इंसान समझ पाता है, चाहे वह विदेशी ही क्यों ना हो। हिंदी को बढ़ावा देना जरूरी है
1: जी, बिल्कुल। हिंदी को बढ़ावा देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारी भाषा हमारी पहचान है। आप कहीं विदेश में जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, और जैसे कि हमारी एक कॉलर रेणु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी हिंदी में भाषण दिया, तो हिंदी में जो प्रभाव पड़ता है वो अंग्रेजी में कभी पढ़ ही नहीं सकता, विशेषकर जब सामने खड़ा व्यक्ति भारतीय हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमें गर्व करना चाहिए अपनी भाषा पर, और चाहे वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो, जो कि एक प्रख्यात कवि भी थे और बहुत ही अच्छी हिंदी लिखते बोलते थे, और चाहे हमारी बात हो हमारे किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की, भारत से जुड़ी हुई जितनी भी महान विभूतियां हैं, सभी ने हिंदी को बहुत ही प्यार से प्रयोग किया, और हिंदी भाषा को प्रयोग करने पर उतना ही जोर भी दिया कि हिंदी को।
0: और अब तो मैडम ऐसा है ना कि मतलब विदेशी भी जो है ना वो भी हिंदी को अपना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: मैंने कुल्लू मनाली में देखा कि मतलब इतनी अच्छी भाषा बोलते हैं ना वो हिंदी।
1: बिल्कुल,
0: कि बहुत ही मतलब स्पष्ट रूप से बोलते हैं वो हिंदी
1: जी। और देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के जो हमारे बच्चों को अंग्रेजी में ही पता है, हिंदी में पता ही नहीं है। अंग्रेजी,
0: हाँ मैडम बिल्कुल,
1: है ना, अंग्रेजी हमारी हमारी हिंदी में भी इस तरह से मिल गई है कि कई शब्दों का अर्थ ही नहीं पता हमारे बच्चों को, कई बार हमें भी नहीं पता होता, कई ऐसे शब्द होते हैं।
0: जी तो जी मैं, जी मैं।
1: वापस एक बार फिर से हम सभी को ये प्रयास करना है कि ना सिर्फ आज के दिन बल्कि सदैव, और ये एक प्रयास हमारा निरंतर जो है वो जारी रहना चाहिए कि हिंदी को हम अपनाएं, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सिर्फ हम कुछ जगह पर हिंदी ना बोलकर हर जगह बेहिचके बिना किसी शर्म के हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें।
0: हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल ठीक बोला आपने मैडम
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद। हेलो, चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी राकेश जी, पहचान लिया हमने आपको, और आज आपकी कॉल बड़ी देर से लगी है।
2: जी जी, तो आज श्रोता, आज महत्वपूर्ण विषय है तो सभी लाइन पे हैं, तो
1: जी
2: इस, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैं अन्य चैनल पे भी मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था, तो फिर आज के प्रोग्राम में मेरे को जगह मिल गई।
1: जी
2: जी जी जी, तो आज का विषय ये है हिंदी दिवस।
1: जी हिंदी दिवस
2: जी, तो मैं इसके विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ,
1: हिंद का गौरव हिंदी है विषय हमारा, हिंदी दिवस जी।
2: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा हमारे को आनी चाहिए, और मैं अपने घर में कहूँ तो हम अपने जो हमारे पति जी हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, हम बचपन में बच्चों को हिंदी आदत डाल देते हैं, तो हमें हिंदी आना चाहिए। और सबसे दूसरी बात ये है कि जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश जो भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है, तो मेरा ये है कि हम अगर सरकार के साथ हमें भी मिलकर कदम उठाना चाहिए, हम कैसे चाहते हैं जैसे हम इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हैं, तो हम कोशिश करनी चाहिए अगर हम हिंदी बोलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हम हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हम जरूर देंगे, जिस तरह से इंग्लिश भाषा को जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, इसी तरह से जो है हिंदी भाषा को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, और मिलेगी नहीं और मिल भी रही है। कई देशों में देखिए तो अमेरिका और यहाँ तक तो चाइना वाले भी हिंदी का उपयोग करते हैं।
1: जी बिल्कुल करते हैं, हिंदी संस्कृत दोनों को ही बहुत महत्व दिया जा रहा है, और हम तो यही कहेंगे तथास्तु राकेश जी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को वो प्यार मिले, वो सम्मान मिले जो कि हमारी हिंदी को मिलना चाहिए।
2: ओ, मिलेगा, अगर मिलेगा तब जब हम आम नागरिक जो हैं बच्चों को हिंदी की आदत डाले, लेकिन कई कई क्या होता है, मैं एक गांव में एक लोगों की घर में गया था मैं, उधर कुछ जो है पूरा बच्चा जो है हिंदी में बात कर रहा था, तो कुछ लोग जो हंसने लगे, देखो जी ने कौन सी क्लास में पढ़ाया, कौन से स्कूल में पढ़ाया जिसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता। देखो मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे हिंदी बचपन से थोड़ी थोड़ी बोलता था, लेकिन जब मैं आकाशवाणी शिमला या अन्य केंद्र से जुड़ा रहा तब मैं हिंदी भाषा पे मैं गौर करता हूँ, और मैं इसे पे मैं अपने लिए नहीं, जैसे कि अभी पहला कॉलर आया था त्रिपुरा से, उन्हें मैंने ये बंगाली में कहते तो मैं हिंदी भाषा का मैंने इसका उपयोग करवाया था।
1: बहुत अच्छी।

0: बात राकेश जी, आपने एक श्रोता को जोड़ा, ना केवल हमसे बल्कि हिंदी भाषा से भी जोड़ा, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बस कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये लड़ी आगे बढ़ती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए।
1: जी, धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताइए।
2: मैं पटियाले से बोल रहा हूँ जी।
0: जी
2: हरे कृष्णा जी, जय गणेश चतुर्थी उत्सव की बधाई हो।
0: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
2: शरण भल्ला जी, पटियाले से जी।
0: जी भल्ला जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत फर्स्ट क्लास जी। जीत जाएंगे हम सब अगर हिंदी हो जाएंगे हम।
0: वाह क्या बात कही आपने। बिल्कुल जीत जाएंगे अगर हिंदी हो जाएंगे। हिंदुस्तानी तो हम पहले ही हैं, और साथ में अपनी हिंदी को भी अगर गले से लगा लेंगे तो बिल्कुल
2: अगर
0: जीत
2: जिसको
0: जाएंगे।
2: हिंदी नहीं आती वो किसी देश में जा ही नहीं सकता जी, चाहे महाराष्ट्र गुजरात। मेरे को तो सुभाष चंद्र बोस की बहुत अच्छी स्पीच याद आती है कि बंगाली होकर कितनी अच्छी हिंदी बोलते थे वो।
0: बिल्कुल, और गर्व गर्व से हिंदी बोलते थे।
2: हिंदी बोलते थे गुजराती भाई अपना गांधी, महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी का भी बहन जी ने बात किया
0: जी।
2: बहुत अच्छी अच्छी बातें की सबने। अगर हिंदी अगर जीत जाएंगे, अगर हम सब हिंदी हो जाएंगे, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी जरूर सीखो, चाहे पंजाब में हो कहीं भी वर्ल्ड में हो। हिंदी तो बाहरले देशों में भी अभी अपना स्थान बना रही है।
0: बिल्कुल बना रही है, और बहुत अच्छे से बना रही है, और बड़ी खुशी खुशी लोग हिंदी सीख रहे हैं। और देखिए हमारे सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छी बात सोशल मीडिया की, जो प्रेरणादायक कहानियां हैं ऐसे लोगों की, हिंदी को अपनाकर वो हिंदी भाषा में रील्स बना रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को दिखा रहे हैं।
2: संस्कृति अपनी जो पुरानी भाषा ना उसमें से निकली हुई भाषा है,
0: बिल्कुल
2: शुद्ध भाषा और तमीज वाली भाषा है। आप कैसे हैं
0: जी?
2: इतनी अच्छी बोली है कि लोग तरसते हैं हिंदी सीखने के लिए जी। हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो हिंदी सुनते हैं तो बोलते हैं मजा आता है, हमको हिंदी भी सिखाओ पंजाबी भी सिखाओ
0: जी। बिल्कुल,
2: मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, हिंदी अगर बोलता था तो हिंदी। आपने कईयों ने बोला कि हिंदी भाषा, अभी कनाडा में चले जाएंगे तो पंजाबी बोलेगा तो अपना भाई लगता है।
0: बिल्कुल, देखिए पंजाबी बोलिए, गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन जो हिंदी है उसे अपना कर रखिए, है ना। हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो हिंदी है उसकी एक अपनी।
2: नारा यही था कि हम सब हिंदी हैं, हिंदी हैं
0: जी।
2: ऐसे याद हुआ ही तब है कि जब हिंदी हैं।
0: बिल्कुल, हिंदी है हम वतन है।
2: ईसाई था जी, अब हिंदी थे तो देश याद हो गया। अगर हिंदी नहीं होते तो देश याद होता ही ना
0: जी। बिल्कुल भला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी बात हमसे की।
2: जीत जाएंगे हम सब जी।
0: बिल्कुल जीत जाएंगे जी, हिंदी है हम। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। वेरी गुड मॉर्निंग।
3: मैं तो पहले सुप्रभात बोलना था।
0: कोई बात नहीं। देखिए स्मृता जी, आपने नाम नहीं बताया लेकिन हमें पता है कि स्मृता जी बात कर रही हैं, और ये हमारी शुमार हो गया है ना आदत में, देखिए हम भी शुमार कह रहे हैं तो ये शामिल हो गए। फिर हमने शामिल के तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बड़ा ही कठिन है।
3: बिल्कुल, एक नासाज वर्ड होता है, आपकी तबीयत नासाज है
0: जी, आपकी तबीयत
3: नासाज। हिंदी का है कि मुझे नहीं पता, बड़ा अच्छा वर्ड है।
0: देखिए उर्दू भाषा भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, ऐसी बात
3: नहीं है। शायरी के लिए
0: जी, शायरी के लिए बहुत अच्छी भाषा है उर्दू भी। देखिए खराबी किसी भी भाषा में नहीं है, लेकिन आज हम बात अपनी हिंदी की कर रहे हैं, और आज ही क्यों, रोज बात होनी चाहिए, प्रतिदिन बात होनी चाहिए हिंदी की, क्योंकि हमारी मातृभाषा है और माँ को हम नहीं भूल सकते।
3: बिल्कुल, है ना, रूप में है ना
0: जी।
3: तो जो हमारे सैनिक है वो भी माँ की सेवा में लगे हैं, और हम यहाँ भाषा को यूज करके सेवा में लगे रहे
0: जी।
3: मैम आज तो दोनों दिन की मुबारकबाद है, हिंदी भाषा, हिंदी दिवस एंड और
0: गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं
3: जी, क्योंकि सब दे रहे हैं। मैं कह रही कि हिंदी भाषा की मुबारकबाद इसलिए कि हम 1947 के आजाद देश के लोग हैं, और हमारी ये भाषा राष्ट्रीय भाषा है
0: जी।
3: गर्व से इसको बोलें और लिखें। मैम जब हमारे बच्चे ना, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज मानी जाती है, जो हमारे बच्चे जैसे थोड़े बोलने लगे, मैंने कहा सिखाओ इनको अपनी पहाड़ी भाषा
0: जी,
3: क्योंकि हमारी भाषा बोलने की ऐसी जड़ें मजबूत रहेंगी। हमने सुना था
0: जी,
3: बट स्कूल में डाले, मैडम कहती है क्या बोलते रहते हैं।
0: वो भी बहुत, देखिए वो भी बहुत आवश्यक है स्मृता जी, क्योंकि अपनी जड़ों से हम तभी जुड़े रहेंगे जब अपनी बोली बोलेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे।
3: बिल्कुल,
0: है ना, नहीं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बोलकर जा रहा है, हम उसकी बस शक्ल जो है वो देखते रह जाएंगे, उन्हें ताकते रह जाएंगे।
3: बिल्कुल सही कहा मैडम, जैसे तमिलनाडु वाले इंग्लिश और अपनी भाषा ही जानते हैं और जवाब ही नहीं देंगे आपको।
0: बिल्कुल, और उन्हें बड़ा गर्व है इस बात पर स्मृता जी, उन्हें कोई शर्म नहीं आती जी।
3: बिल्कुल,
0: वो शर्म महसूस नहीं करते
3: जी। मैं बात करूं 1969 में रिलीज मूवी जो थी, ब्लॉकबस्टर रही, राजेश खन्ना जी की सुपरहिट मूवी ये आराधना
0: जी,
3: वो प्लेटिनम जुबली उसने मनाई, और वो 100

0: सिनेमा थिएटर में लगी थी, मगर वो उन स्टेट्स में भी लगी। आज मैंने ये पढ़ा कि स्पेशली जो नॉन हिंदी बोलने वाले स्टेट्स हैं, मराठी वो भाषा पर, उन्होंने भी इसको पसंद किया। कैसे समझा, डबिंग तब होती नहीं थी, वो आप सोच सकते हैं कि फीलिंग्स उसके लिए कैसी थी, भाषा को कैसे समझा होगा मुझे नहीं मालूम, बट हिंदी भाषा, हिंदी दिवस वाले दिन आज मैंने ये रिकॉर्ड देखा।
1: जी बहुत अच्छी बात है स्मृता जी, और आपने कॉल किया हमेशा की तरह, बहुत अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हैव अ नाइस डे, बहुत मुबारकबाद।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम यहीं पर होता है संपन्न। आज हिंदी दिवस पर हमने बात की हिंद का गौरव हिंदी विषय पर, और जाते जाते आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मीनाक्षी कालिया। अब मुझे यानी शालिनी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़।

अभी आपने फोन इन प्रोग्राम सुना हेलो चंडीगढ़। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं। अगला प्रोग्राम है गाने सुहाने।

गाने सुहाने प्रोग्राम का ये पहला गाना था साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। ये फिल्म थी विश्वात्मा और इसमें संगीत था विजू शाह का।

अभी आपने थ्री इडियट्स फिल्म से ये गीत सुना, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों ने। शांतनु मोहित्रा के संगीत में ये गीत था। गाने सुहाने, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से।

गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और यही कार्यक्रम अपने रेडियो के सेट के साथ साथ आप हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अभी आपने जो ये गीत सुना इसे हमने बॉम्बे फिल्म से लिया, चित्रा की आवाज़ में ये गाना था। और अब आगे बढ़ें, अगला गाना आपके लिए प्ले करें परदेश फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाना।

0: अभी आपने परदेश फिल्म का एक गीत सुना, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं।

0: आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: गाने सुहाने प्रोग्राम के आखिर में डंके फिल्म से गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: अभी आपने अरिजीत सिंह को सुना, यह फिल्म थी डंकी। इस गीत के साथ ही गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है शेरो नगमा, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
4: इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।

आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इबादतों की तरह ये काम करता हूं, मेरा उसूल है, पहले सलाम करता हूं।

दोस्तों, ये सलाम है, दिल का पयाम है, मोहब्बत के नाम है, और मोहब्बत इसकी डगर ना जाने कहां

राह में कितने चेहरे, कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ अजनबी कुछ अपने अपने से। गर मोहब्बत भरी एक नजर नजीर हो जाए, तो उल्फत में जीने का मजा आ जाए।

अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शेरो नगमा, विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। बस यूं ही मिलते मिलाते रहो, फासले तय करते रहो, सुना है उनसे मुलाकात होगी, अगर हो गई तो बड़ी बात होगी।

0: खबर।
1: दोस्तों, बातों ही बातों में जब बात बन जाए, मचल जाए जो दिल तो कह उठे, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं।

0: ये तो था आज का शेरोनगमा। अब दीजिए अपने हम सफर अनिल पुंज को इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी प्रोग्राम में किसी मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दिन के 12 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस

0: कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12:05 हुए हैं। समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे विविध भारती मुंबई से।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: फिर भी मोरे जियाराम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

इस युगल गान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती के मुंबई केंद्र से कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजा है, आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। तो श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे आप। उसके बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। इसी तरह श्रोताओं, शाम को भी प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर, और पंजाबी समाचार जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 6:20 पर। हमारे स्टूडियो से कुछ फिल्मी गीत सुनिएगा दोपहर 1:15 पर, और फिर शाम 5:05 पर भी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफ़र आप सुना करते हैं दोपहर 1:30 पर। ये कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। वहीं से आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम।

श्रोताओ, आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किया करते हैं। ये आप सुनेंगे पहले दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी। सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से। वहीं से हर रोज की तरह आज भी दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा कार्यक्रम में आज सेहतनामा होगा। इस सिलसिले के तहत आज का विषय है पोषण और हमारा आहार। डॉक्टर अदिति प्रभु के साथ की गई बातचीत का आज आप दूसरा भाग सुनेंगे। हमारे स्टूडियो से आप

हमारे केंद्र से ही शाम 6:30 मिनट पर प्रसारित करेंगे आपके लिए हिंदी में समाचार समीक्षा। कुछ पंजाबी गीत भी सुन सकते हैं आप शाम 6:35 मिनट पर और फिर शाम 7:47 मिनट पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला करेंगे हम रिले विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 7:00 बजे। श्रोताओं 7:45 मिनट पर और फिर रात 10:30 मिनट पर हमारे केंद्र से आपके लिए हम प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित करेंगे। रात 8:00 बजे सुना करते हैं आप हवा महल कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में नाटिका होगी दीपशिखा। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ नए फिल्मी गीत रात 8:15 मिनट पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9:00 बजे। आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं आप रात 9:30 मिनट पर। आज के फनकार हैं श्रोताओं फिल्मकार जीपी सिप्पी। और विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही रात 10:00 बजे हम रिले करेंगे आपके लिए उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्रोताओं प्रादेशिक हिंदी समाचार और इसके फौरन बाद 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ।
1: उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत किया है और दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोष सिद्धि दर के आंकड़ों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा रही है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ आरंभ के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार सभी के जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रार्थना की कि भगवान गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लाएं। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज और हिंदी दिवस की सबको बधाई और शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान श्री गणेश सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें तथा सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करें।

0: सभी को गणेश चतुर्थी, हर तालिका तीज और हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। भगवान श्री गणेश जी सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें तथा सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करें। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से प्रत्येक परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनी रहे। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी राष्ट्रीय चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। आइए आज हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने और इसे नई पीढ़ी तक गौरव के साथ पहुंचाने का संकल्प लें।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी राष्ट्रीय चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है।

हरियाणा के पानीपत जिले से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। कल देर रात तक बप्पा को घर लाने के लिए बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की जमकर खरीददारी की। हरियाणा के लोक निर्माण तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कल नारनौल के नांगल चौधरी में श्री विश्वकर्मा सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था द्वारा आयोजित तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और क्षेत्र की पहचान वहां की प्रतिभाओं से होती है। जब किसी युवा की मेहनत और उपलब्धि को समाज का सम्मान मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। जन स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर सभी 17 सितंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाले राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। कल फाइनल में उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: 13.3 करोड़ रुपए जारी किए ने। इस तो इलावा अगले वित्तीय साल 2026-27 लिए 1,17,142 बच्चों को फायदा पहुँचाने लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, ता जो स्कूल पद्धर से बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। पंजाब के देहाती विकास ते पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध ने बीते दिन ही कहा है कि पंजाब सरकार वालों विकसित भारत गरंटी रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRGV स्कीम तहत पंजाब के पिंडां विच वड्डे पद्धर ते विकास कार्ज किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 तो लैके हुण तक इस स्कीम तहत 1,88,000 तो वध दिहाड़ीदारियां लई पैदा कीतियां गईयां ने, जिस नाल रजिस्टर लाभपात्री परिवार योजना मुहैया करवाया गया है। उन्होंने अगे कहा कि सूबा सरकार देहाती इलाकों के लोड़वंद परिवारों को वध तो वध रुजगार देने लई इस स्कीम तहत नवे लाभपात्रियों भी शामिल कर रही है। पंजाब के खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने दस्सिया है कि मौजूदा रुत 2026-27 दौरान गन्ने की काश्त हेठ रकबा वध के 1.16 लाख हैक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार ने 700 लाख क्विंटल उत्पादन का टीचा मिथ्या है। उन्होंने कणक और झोने वाग गन्ने की फसल में लाभवंद बनाने लिए बहुपक्षी रणनीति का ऐलान किया है। इस तहत वड्डे पद्धर से मशीनीकरण, जमीनी पद्धर तक तकनीक पहुँचाने ते गन्ना काश्तकारां लई वित्तीय लाभ वर्गे उपा शामिल ने। जलंधर के वधीक जिला मजिस्ट्रेट अमरिंदर कौर वालों भलके संबतसरी महापर्व के संबंध में जिले में मीट मच्छी और बुचड़खानिया दुकाना बंद रखने के हुक्म जारी किए गए हैं। हुक्मों में यह भी कहा गया है कि इस दिन होटल ढाबे अहातियां ते मास नॉन वैजीटेरियन परोसण ते पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज भारत दी यूनियन मर्दा ते औरतों की हाकी टीम को एशिया कप में शानदार जितों से बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि खिडारियों के समर्पण, अनुशासन और टीम वर्क ने देश लई माण पैदा किया है। राष्ट्रपति ने सारे भविख में बच्चों के नौजवान खिडारियों की सफलता की कामना की है। पंजाब ते हरियाणा में बीते दिन कई थावां ते दरमियानी तो तेज़ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अज तो लैके 17 सितंबर तक इन दोवें राज्यों में कई थावां ते चंडीगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इन्हां दिनां विच बारिश नाल पंजाब दे बहुत सारे जिले प्रभावित होण दी संभावना है। इस दे नाल ही प्रदेशी खबरां खत्म हुई हैं। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन सुनोगे 1:40 ते। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोतो, इस समय 1:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

बुढ़ा मिल गया, आपने सुना इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीता और गीता फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा एक गीत, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की ही आवाज़ों में जुगनू फिल्म से ये गीत।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना
2: अभी तक आप सुन रही थी कुछ फिल्मी गीत एफएमएक्स 7.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 1:30 होने को हैं, अब से बस थोड़ी ही देर में विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रैली करेंगे आपके लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफ़र।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1, 2, 3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है, और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन, कनस्तर, जो हाथ में आता है, बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य

सूत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजा कर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। याद कीजिए उन पलों को, या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियाँ प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियाँ जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियाँ आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाज़ों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनघट सी जानी पहचानी आवाज़ भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की छुक छुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियाँ किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। हर आवाज़ अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है, तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल, या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाज़ों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो, या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज़ हो, या ढल गया दिन हो गई शाम में बैडमिंटन के रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियाँ संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है। बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हम जोली का गीत है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा के टिक टिक छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय की निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक-टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक-टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आरडी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ, हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज़ आती है, पानी की आवाज़, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियाँ हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रख कर तबला बजा लेते हैं, वीणा की

ग्रंथों द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी, और ये बजाते भी हैं। मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्य यंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्य यंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली चम्मच और मेज ये वाद्य यंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे छोटे छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हों या गाड़ी में गए हों, दोपहिया वाहन पर गए हों या साइकिल पर गए हों और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: के दांत लीक करो तो मुझको जेल भेज दो, तुमने में क्या है ये जवाब थानेदार।

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूं, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूं। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आज़मी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज़ है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज़ हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। आज संसार में करीब 7,000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था।

0: उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने तिरुक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा

0: का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
3: गणेश चतुर्थी की

0: पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी उत्साह उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
1: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृह मंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।
3: छलके तेरी आंखों

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का, और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: मैं आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो।

लो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना।

दिल में संभालो, मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डाल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में डाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
2: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
1: भाई पूरा देश
2: आ रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा। आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूँ तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर

0: में गूंजती रहती है। हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते हैं ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे,
0: बिल्कुल,
1: आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से,
0: ये बात तो बिल्कुल
1: बच्चों की
0: सही
1: जो
0: है।
1: हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति
0: गणपति
1: बप्पा
0: बप्पा
1: मोरिया,
0: मोरया,
1: मंगल
0: मंगल मूर्ति
1: मूर्ति
0: मोरिया।
1: मोरिया।
0: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना? सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती पे खड़ा होता है, या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े होते हैं,
1: हाँ
0: तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है तो।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं, और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: भाई तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की, तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी।

0: मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
1: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
0: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ

0: भूल जाता। वो जान लेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं,

0: आठ हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते, एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा, इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने 4 रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार।

0: उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी, और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारी सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत सारे
0: सखी।
1: संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्यौहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है, और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का

0: हम स्वागत करें इसी भावनाओं के साथ। बहुत सारे संदेश
1: हाँ,
0: आए
1: और
0: हुए
1: हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
0: बिल्कुल। और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आएं उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
1: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं, और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
0: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है
1: और
0: ना।
1: लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई
0: जी
1: ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: और आज 14 सितंबर है, और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है
0: बिल्कुल,
1: चंचल। कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है, और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी

0: होती है चंचल,
1: बिल्कुल
0: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है, और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना। बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
1: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है, जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
0: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
1: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था
0: बिल्कुल
1: कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं,
0: बिल्कुल, ये बात तो
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: मिट्टी से जुड़े
0: सही,
1: हुए लगते हैं ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
1: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे हु जो बसे हुए हैं, उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है उन्होंने लगभग, कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में, और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज़ है।
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे
1: जी
0: भी ज़रूरत हो गई
1: जी
0: है, लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है
1: जी
0: हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने। निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं, जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
0: चलिए

0: अरे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें। खाने पीने की बात, भाई मोदक की बात अलग हुई लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
0: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
3: हाँ
0: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
3: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
0: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं।
3: जी
0: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फेंटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
3: है, जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
3: हाँ।
0: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी जो
3: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
0: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
3: आसानी से निकल
0: जी। अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकाल कर छान लेना है। अब एक

0: कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो
1: जी
0: सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सॉल्ट पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक कि जब तक कि कमल ककड़ी थोड़ी नरम
1: नरम ना
0: ना।
1: हो जाए।
0: जी, जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना है ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब ख़त्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए। आपकी नदरू यखनी तैयार है।
1: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी। इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
0: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते हैं।
1: हाँ, और वहाँ की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताज़ी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया है कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबालें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था। लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही
0: दही
1: ना
0: ना
1: फट जाए,
0: जी।
1: तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं,
0: जी।
1: इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन
0: और
1: की बात है।
0: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
1: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो एक गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था,
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज़्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व ज़रूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
2: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज़्यादा काम करते हो।
1: जी जी,
2: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करना

0: की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
0: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: जी
0: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए। तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम करिए बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि
1: जी
0: हमें चखने की तो बहुत आदत होती है।
1: हाँ
0: चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
1: जी बिल्कुल
0: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना ज़रूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना ज़रूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया, या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए, या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको खाने में होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ठहरता है।
1: जी आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो
0: जी
1: ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता,
1: जी सही
0: उसको
1: तरीका।
0: सही वक्त पे पानी की ज़रूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी,
0: ना
1: बैठकर
0: बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए,
1: सिप
0: जो कि
1: सिप करके
0: आपके लिए
1: पानी।
0: बहुत ज़रूरी हो जाता है भागदौड़ की ज़िंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए।
1: जी
0: कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे
1: जी
0: धीरे, ये ज़रूरी है।
1: जी
0: गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है,
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: बैठ कर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज़ के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज़ के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज़ में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज़ है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज़ है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी ज़रूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है

0: कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
1: जी
0: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक
1: जी
0: उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए। और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है,
1: बिल्कुल
0: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं हैं,
1: जी
0: या
1: बिल्कुल
0: फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता, और
1: अच्छा
0: खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल एक गाना सुनते हैं यहाँ पर। कौन
0: जी,
1: सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार,
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है।
0: हाँ
1: मन
0: जी,
1: में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते
0: एब्सोल्युटली।
1: हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खास तौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूरी
1: उसी को निकाल दो।
0: जी।
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए। मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
0: जी।
1: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हो और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी।
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
0: जी
1: और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी। खाने का सही

0: तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो, 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में, आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
0: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
1: ऐसा
0: टाइम?
1: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूँगी पहले तो रूटीन सेट करिए, और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे। मगर भूख लगना उस वक्त पे ज़रूरी है, बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा
0: जी, अभी 2 टाइम का भी चल रहा
1: बहुत
0: है फैशन
1: ज्यादा।
0: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
1: हाँ,
0: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
1: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में, हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
0: जी,
1: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहाँ आप उसका मजा अलग से ले पाए। जहाँ पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं,
0: जी, बिल्कुल।
1: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसे काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहाँ पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा
0: जी
1: खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और
0: हाँ
1: आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
0: जी, एक गाना सुने,
1: जी
0: कौन सा?
1: क्यों ना, ये जीवन है
0: इस
1: पिया
0: जीवन
1: का घर,
0: जी इस जीवन का यही
1: इस
0: है रंग
1: जीवन
0: रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी जी
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगे

0: कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते, अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका
1: जी
0: मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
1: बिल्कुल
0: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते।
1: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
0: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
1: जी
0: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3-4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है,
1: जी
0: उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो
1: जी
0: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनोआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनोआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनोआ को किनोआ ही बोलते हैं।
1: सावा।
0: नहीं,
1: अच्छा
0: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो
1: ये
0: ये
1: तो
0: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने,
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
2: एक बार

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, बल्कि
1: हाँ,
0: ये कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार।

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आते हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि ये कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और खुश।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
0: अच्छा,
1: सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन्स आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: आज भी वही
0: धान को
1: इस्तेमाल,
0: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो बहुत
1: हमारे यहाँ
0: मोटा होता
1: उकड़ा
0: है।
1: तांदूल बोलते हैं
0: हाँ
1: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं,
0: जी जी जी
1: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
0: ओ
1: छोटे चम्मच,
0: हो
1: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं,
0: जी
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
0: जी
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज़्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो हाँ ये बुरा है, क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे,
0: जी
1: विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं।

0: मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है,
1: बिल्कुल
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
1: होनी
0: होने
1: होनी
0: ही
1: है,
0: वाली
1: बिल्कुल
0: है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल। घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताज़ा
0: जी
1: तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज़ खाओ, उसके रूप अनेक हैं।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4ों चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फ़ायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे
1: नहीं
0: के रूप में,
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की ज़रूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है, छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट भी होता है, और उतनी ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई ज़रूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो, तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए, और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी,
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे, हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ रही है, जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज़ करो।
0: खीर घर में बना के।
1: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो ख़त्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना, वो भी थोड़े चेंज हो गए।
0: जी
1: उनको हर चीज़ उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं, तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो

0: निसर्ग में जो चीज़ें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मज़ा उस तरीके से ले ले, तो
1: बिल्कुल,
0: हमें उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें, तो
0: हाँ
1: वो भी ठीक नहीं है,
0: ठीक नहीं है।
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर में
0: हाँ,
1: जा रहा
0: और
1: है जो
0: कुछ लोग
1: हानिकारक
0: ऐसे
1: है।
0: बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत, सुव्यवस्थित और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के पनबिजली बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन में कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं, किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। रूपरेखा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेशानुसार तैयार की गई है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन प्रो सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।

0: फाइनल में जोरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। रेस 3 फिल्म से गीत हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं मीत ब्रदर्स दीप मनी और नेहा भसीन की आवाजें हैं। मीत ब्रदर्स का ही संगीत, कुमार के बोल।

चुनाव रेस 3 फिल्म के गीत के बाद इंद्रनील की रचना लीजिए पेश है सचिन जिगर की तर्ज में। गायक कलाकार है राघव चैतन्य और वरुण जैन। फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

ये गीत हमने चुना है तड़प फिल्म से। इसे गाया है दर्शन रावल, शिल्पा राव और चरण ने। गीतकार है इरशाद कामिल, संगीत से सजाया प्रीतम ने।

रुक कर लिया है शिद्दत फिल्म के गीत की ओर। साचे टंडन परंपरा टंडन की आवाजों में गीत है बोल कौसर मनीर के, धुन तैयार की सचिन शिखर ने।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य

0: केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाश्वत सचदेव के संगीत में यह गीत है धुरंधर फिल्म से। गीत को लिखा और निभाया है सिमरन चौधरी ने।

अबारी संदीप श्रीवास्तव की रचना की लूडो फिल्म के गीत में संगीत प्रीतम का है। आनंद लीजिए अरिजीत सिंह के गाए इस नगमे का।

लूडो फिल्म से अरिजीत सिंह का गाया गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.4।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है।

0: पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
7: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो।
6: धन्यवाद।
4: बहुत बहुत बधाई।
6: धन्यवाद।
4: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
5: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के

0: मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुईं और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
2: आइए मारिया जी।
3: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हो।
2: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
3: और बुरी?
2: जी।
3: अब भला वो कैसे?
2: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
3: हाँ हाँ जरूर।
2: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
2: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
3: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
1: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
4: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
0: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
1: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
4: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था,

0: उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
1: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
0: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
1: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
0: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
0: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
1: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
0: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्या

0: ध्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
1: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
1: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है।

0: है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं, किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट

0: SU845 NSE Money Majra Chandigarh. Call 9876277700.
1: श्रोतियों हुण असीं इह गीत तुहानूं सुनवा रहे हां बाजीराव मस्तानी फिल्म चों सुखविंदर सिंह दी आवाज़ च संगीत है संजय लीला भंसाली दा।

0: ਸ਼੍ਰੋਤਿਓ, ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस पर राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को देश का गौरव बताया। हरियाणा में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी।

0: आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश उत्सव का समापन 25 सितंबर को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा तैयार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस पर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने इस दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: आज हरियाणा में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी। अंबाला जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आज हिंदी दिवस मनाया गया। राजकीय महाविद्यालय नारायणगढ़ में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। प्राचार्य रोहित कुमार ने सभी भाषाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए मातृभाषा को सर्वोपरि बताया। जिला अंबाला के शहजादपुर के महारानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा हिंदी सप्ताह आज हिंदी दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ। समापन समारोह पर कविता उच्चारण और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार अंबाला आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबाला छावनी में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित करना और दैनिक जीवन व कामकाज में इसके उपयोग को बढ़ावा देना था। हिंदी दिवस के अवसर पर हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी द्वारा अकादमी के विभिन्न प्रकोष्ठों से संबंधित कर्मचारियों के साथ हिंदी भाषा के महत्व एवं उसकी विशेषताओं पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने हिंदी के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हिंदी एक विशाल और समृद्ध भाषा है जो मन को स्पर्श करती है तथा मनुष्यों के भावों और अंतर्मन की आवाज को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से इस 10 दिवसीय त्यौहार के प्रथम दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर धार्मिक कार्यक्रमों के शुभारंभ के समाचार मिले हैं। अंबाला में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने गणेश जी की प्रतिमा को लड्डुओं का भोग लगाया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर फरीदाबाद में भी गणेश उत्सव की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने अपने घरों, सामाजिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की विधिवत स्थापना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। गणेश उत्सव का समापन 25 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस सिलसिले में हरियाणा सरकार के मंत्रियों द्वारा अलग अलग जिलों में पत्रकार वार्ता कर लोगों को

0: इस अभियान के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। आज जींद में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में देश और प्रदेश में विकास के कई कार्य हुए हैं। जींद को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। उन्होंने बताया कि जनसेवा को समर्पित इस अभियान के दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
1: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में एक ही स्थान पर नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सीधा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिकों के कैंप में पहुंचते ही पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा। किसी भी लाभार्थी को सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न किसी प्रकार की परेशानी या धक्के खाने पड़ेंगे।
0: फतेहाबाद में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर देश को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की राष्ट्र निर्माण की यात्रा को समर्पित इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर की शाम विकास स्थलों और घरों में आशीर्वाद का दिया जलाकर होगी।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये दिखाने का काम किया है कि ट्रांसपेरेंसी से राज चलाते हुए किस तरीके से प्रदेश को देश को आगे ले जाया जा सकता है। 17 सितंबर को इन 12 सालों के अंदर जितनी भी हमारी नई डेवलपमेंट हुई है, चाहे हाईवेज निकले हैं, बहुत सी सरकारी बिल्डिंग बनी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सामुदायिक केंद्र की बात हो, उनके ऊपर हम दिए जला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भेजने का काम हरियाणा की जनता करेगी।
0: कुरुक्षेत्र में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता कर सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आशीर्वाद का दिया, रक्तदान शिविर, पौधारोपण सहित कई कार्यक्रम किए जाएंगे। विद्यालयों में मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा के तहत चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं होंगी।
3: 2047 में विकसित भारत का सोच जो मोदी जी ने एजेंडा दे रखा, उसके प्रति हमारे क्या काम रहेंगे, हमारी कितनी जिम्मेदारी रहेगी, उसके बारे में विचार करना। दूसरा रहेगा इसमें मेरे सपनों का भारत। हमारे जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें इस तरह का प्रयोगिता होगी। हर बच्चे का अपना भी एक आइडिया होता है भाई 2047 कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सुझाव आ जाता है।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता हरियाणा के लिए वैश्विक व्यापार के नए अवसर खोलने वाला महत्वपूर्ण समझौता है। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हरियाणा यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कपड़ा, जूता, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को यूके के बाजार में बेहतर पहुँच मिलेगी। यह समझौता हरियाणा के युवाओं, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और नई तकनीकों से जोड़कर विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विदेश तालमेल विभाग का लोगो भी लॉन्च किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस पर राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को देश का गौरव बताया। हरियाणा में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश उत्सव का समापन 25 सितंबर को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा तैयार। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

है, जलता है और सालों तक जमा रहता है। रिसाव करने वाला लैंडफिल जहरीला पदार्थ भूजल में छोड़ सकता है। खुला डंप आसपास के इलाकों में धुआं फैला सकता है। टूटी हुई बैटरी या कीटनाशक का डिब्बा श्रमिकों और परिवारों को धातुओं, विलायकों और अन्य जहरों के संपर्क में ला सकता है। ठोस और खतरनाक कचरे से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं एक साधारण तथ्य से शुरू होती हैं। डंप बंद होने के बाद भी मीथेन और लीचेट 20 या 30 साल तक फैलते रह सकते हैं। इससे कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेगा। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लाने का प्रावधान है, जिसमें पंजीकरण के बिना संचालन, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अनुचित प्रथाएं शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत स्त्रोत्र पर ठोस अपशिष्ट का 4 स्तरीय प्रतिकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अपशिष्ट को गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में अलग करना आवश्यक है। गीले कचरे में रसोई का कचरा, सब्जियां, फलों के छिलके, मांस, फूल आदि शामिल हैं, जिन्हें निकटतम सुविधा केंद्र में खाद बनाने या जैव मिथेनकरण के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी और रबर आदि शामिल हैं, जिन्हें छंटाई और पुनः चक्रण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं में ले जाया जाएगा। सैनिटरी कचरे में इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन आदि शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित रूप से लपेटकर अलग से संग्रहित किया जाएगा। विशेष देखभाल वाले कचरे में पेंट के डिब्बे, बल्ब, पारा थर्मामीटर और दवाइयों के रैपर आदि शामिल हैं, जिन्हें अधिकृत एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाएगा या निर्दिष्ट संग्रहण केंद्रों पर जमा किया जाएगा। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए। नए नियमों में थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इन नियमों में लैंडफिलिंग पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है और पुराने कचरे स्थलों के सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। लैंडफिल में केवल गैर पुनर्चक्रण, गैर ऊर्जा पुनः प्राप्त करने योग्य और अक्रिय पदार्थ ही डाले जा सकेंगे। स्थानीय निकायों के लिए अविभाजित कचरे को स्वच्छता लैंडफिल में भेजने के लिए उच्च लैंडफिल शुल्क निर्धारित किया गया है। आमतौर पर इससे पहले अपने दो तरह के कूड़ेदान देखे होंगे, लेकिन नए नियमों में कचरे को विभाजित करते हुए कूड़ेदानों की संख्या को 4 कर दिया गया है। हरे रंग के कूड़ेदान में गीला या जैविक कचरा, रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, फल व सब्जियों के छिलके आदि डाले जाएंगे। नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा या पुनर्चक्रण वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और लाल रंग के कूड़ेदान में सैनिटरी अपशिष्ट जैसे डायपर, सैनिटरी नैपकिन डाले जाएंगे तथा बैंगनी रंग में कूड़ेदान में खतरनाक वस्तुएं जैसे बल्ब, बैटरी, एक्सपायरी दवाइयां आदि डाली जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए इस नियम को हरियाणा में भी सख्ती से लागू किया गया है। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं और बदलाव शुरू किए हैं। राज्य के सरकारी तथा निजी संस्थानों, घरेलू उपभोक्ताओं को 4 बिन प्रणाली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग नगर निकायों के बजाय अब जिला स्तर पर सिंगल ई टेंडर मॉडल लागू करने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के सभी 87 शहरी निकायों के लिए कचरा प्रसंस्करण स्थलों की पहचान की जा चुकी है और बड़े पैमाने पर डंप साइट्स को साफ करने का काम तेजी से जारी है। बड़े कचरा उत्पादकों जैसे बड़े संस्थान, सोसाइटी या व्यावसायिक परिसर के लिए ऑन साइट गीला कचरा प्रसंस्करण या प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कचरा प्रसंस्करण प्रमाण पत्रों के व्यापार की सुविधा भी इसका हिस्सा है। सार्वजनिक स्थानों, नालों और खाली भूखंडों पर कचरा फेंकने वालों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा चालान और निगरानी अभियान को तेज कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक पूरे प्रदेश को लीगसी वेस्ट यानी बरसों से एक स्थान पर जमा कूड़े से मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के अनुसार राज्य के 75 लीगसी वेस्ट डंप साइट्स में से 60 का वैज्ञानिक बायोमाइनिंग के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है।
जबकि शेष 15 डंप साइट्स को निर्धारित समय सीमा तक पूरी तरह समाप्त अथवा वैज्ञानिक तरीके से निस्तार

0: किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों, नालों, जल स्रोतों और खाली भूखंडों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया सख्त की जाएगी। सरकार के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब तक 7,63,00,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा वसूला जा चुका है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 3,486 चालान किए गए। प्लास्टिक और पैकेजिंग कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 23 निर्माता, 61 आयातक और 21 ब्रांड मालिकों सहित कुल 105 कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के दायरे में लाया गया है। इन कंपनियों को अपने उत्पादकों से उत्पन्न कचरे के संग्रहण और वैज्ञानिक निस्तारण की जिम्मेदारी निभानी होगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में 14,889 कबाड़ बीनने वालों की पहचान की है, जिनमें से 5,356 का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा 217 स्वयं सहायता समूहों को कचरा प्रबंधन से जोड़ा गया है तथा 1,515 वार्ड समितियों का गठन किया गया है। सरकार द्वारा चलाई गई यह मुहिम तभी सही मायने में सार्थक सिद्ध होगी जब प्रदेश व देश का प्रत्येक नागरिक कचरे के सही निपटान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानेगा। कचरा प्रबंधन से ही स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकेगा। इसे साकार बनाने के लिए जन भागीदारी को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाना जरूरी है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: इस वेले तुसी आकाशवाणी चंडीगढ़ दे नाल FM 107.2 MHz ते हुन पेश ने कुछ पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है श्रोतियों। सब तो पहला आओ सुनते हैं जस्सी दा गाया गीत।

0: ਸਰੋਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 94 ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤੇ ਜੈਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज़, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
4: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून

0: खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

अभी आपने इरफान सिद्दीकी का लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत बद्ध किया इकबाल फिल्म का गीत सुना। अब सुनिए अमित मिश्रा का गाया लिखा और संगीत बद्ध किया अतिथि तुम कब आओगे इस फिल्म का गीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सपने साजन के लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक के स्वर में। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। अब सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र के युगल आवाजों में बॉबी फिल्म।

ये थे शैलेंद्र और लता मंगेशकर फिल्म बॉबी में। अब आपको सुनवा रहे हैं उत्तम सिंह का संगीतबद्ध किया और आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और उदित नारायण की फिल्म का नाम दिल तो पागल है।

0: दिल तो पागल है, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुना। जयमाला कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी कली का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम रामलखन।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश शान फिल्म से गीत संगीत आनंद बख्शी और आडी बर्मन का, आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी, आडी बर्मन और साथी।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका दीपशिखा। लेखक हैं गिरीश।
1: धन्य है देवी ऋषि, धन्य है। तुम्हारी कला ने हमें चकित कर दिया। जी चाहता है देखता ही रहूं तुम्हारा नृत्य, किंतु समय बहुत हो गया है। रात्रि अपने पिछले पहर की तरफ दौड़ रही है। तुम भी थक गई हो, अब जाओ विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: कौन कौन है?
1: मैं हूँ उर्वशी, द्वार खोलो सारंग।
2: उर्वशी, तुम इतनी रात को?
1: हाँ, तुम अब तक जाग रहे हो?
2: हाँ, क्या करता, मध्य रात्रि तक तो नदी तट पर बैठा।

0: तुम्हारी बाट देखता रहा, लेकिन तुम्हारी तरफ से निराश हो गया तो कुटिया पर आ गया।
1: मैं जानती हूं कि मेरी प्रतीक्षा में तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, परंतु करूं भी क्या सारंग, मैं एक नर्तकी हूं, एक ऐसी नर्तकी जिसे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी प्रसन्नता, आकांक्षा और सुख का बलिदान करना पड़ता है, दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है।
0: क्यों, ऐसी क्या बात थी?
1: हस्तिनापुर के राजकुमार जो वल्लभीपुर युवराज के मित्र हैं, वल्लभीपुर आए हुए हैं।
0: ओ।
1: उनका मनोरंजन करने मुझे राजसभा में नृत्य के लिए बुलाया था। मध्य रात्रि तक तो नृत्य ही होता रहा और उसके बाद कहीं जाके मुझे छुट्टी मिली। वहां से मुक्त होते ही रात्रि के पिछले पहर तुमसे मिलने आई हूं।
0: परंतु देवी, तुम राज्यसभा की नर्तकी हो, वल्लभीपुर के असंख्य युवक तुम्हारी मुस्कुराहट पर अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रस्तुत है, राज्य की सुख समृद्धि तुम्हारे पैरों में लौट रही है, उसे ठुकराकर तुमने मुझ में ऐसा क्या पाया जो
1: मैंने पाई है? जीवन की साधना सारंग, जीवन का सुख और मेरी दहकती हुई आत्मा को शांत करने वाली तृप्ति। मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ सारंग। मैं नहीं चाहती कि मेरा सब कुछ सबके लिए हो, मैं चाहती हूँ मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए।
0: उर्वशी, उर्वशी, भावनाओं के झंझावात में उड़ने से पहले एक बार फिर सोच लो, मैं अकिंचन हूँ, दरिद्र हूँ, संसार में अकेला हूँ।
1: कुछ भी हो, मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पण कर रही हूँ सारंग।
0: उर्वशी।
1: हाँ, मेरी कला आज से तुम्हारी है। जहाँ तुम्हारा संगीत होगा वही मेरी कला होगी सारंग।
0: उर्वशी, उर्वशी, तब तो इस दरिद्र कलाकार की एक घास फूस की कुटिया राजमहल बन जाएगी
1: सारंग।
0: परंतु देवी, ये सुवर्ण के आभूषण यहाँ नहीं पहन सकोगी।
1: स्वीकार है सारंग।
0: चांद और सूरज के हाथ फूल, तारों की करधनी, ओढ़ने के लिए कोहरे की चादर, खाने के लिए धान की बालें, गन्ने और सिंघाड़े, कलाकार की यही तो संपत्ति है उर्वशी। इसी संपत्ति को लेकर जीवन बिताना होगा। बोलो, स्वीकार है?
1: मुझे सब कुछ स्वीकार है सारंग।
0: तो जाओ, एक बार जाकर अपने प्रासाद को नमस्कार करो, वो तुम्हारी कला का मंदिर है, उसी मंदिर में तुम्हारी कला ने जन्म लिया, वहां उसका विकास हुआ और वहीं उसका श्रृंगार हुआ। कल प्रातः सूरज की किरणों पर चढ़कर यहां आना, मैं कुटिया के द्वार पर खड़ा तुम्हारा स्वागत करूंगा।

0: महामात्य।
1: आज्ञा देव।
0: उर्वशी कहाँ है?
1: अब राग क्षमा हो देव, वो आज नहीं आई।
0: नहीं आई? क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमारे मित्र यशोवर्मन अभी उसकी कला से तृप्त नहीं हुए? जाओ, उसे तत्काल हमारे मित्र के निवास स्थान पर भेज दो।

0: उर्वशी।
1: हाँ।
0: आज हम दोनों एक हैं।
1: हाँ। हम दोनों प्रेम कुंज के पंछी हैं सारे।
0: लेकिन उर्वशी, क्या ये संसार ये सब सहन कर सकेगा?
1: सहन नहीं कर सकेगा। कारण?
0: युवराज का कोप। जब युवराज को ये पता चलेगा कि उर्वशी ने अपनी कला, अपना व्यवहार, अपना जीवन बदल दिया है, तो संभव है कि हम दोनों पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी।
2: संभव ही नहीं, निश्चित।
0: महामात्य, आप यहाँ?
2: हाँ, देवी उर्वशी के लिए आना पड़ा।
1: मेरे लिए?
2: युवराज के मित्र हस्तिनापुर के राजकुमार ने तुम्हें अपने निवास स्थान पर बुलाया है, अब भी इसी समय।
1: लेकिन क्यों?
2: वे आज अकेले ही तुम्हारी कला का रसपान करना चाहते हैं।
1: उनसे कह दो कि मेरी कला मर चुकी है, मैं अब राज सभा की नर्तकी नहीं हूँ, उर्वशी हूँ, केवल उर्वशी।
2: उसका परिणाम क्या होगा पता है?
1: मैं जानती हूँ, मैं अमर नहीं हूँ।
2: मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हट न करो, वरना तुम और तुम्हारा ये सारंग दोनों
0: बंदी बना दिए जाएंगे, यही ना? पर ये कोई अनहोनी बात नहीं है महामात्य।

0: बंदी तो हम पहले ही बन चुके हैं। हम दोनों आपस में एक दूसरे के बंदी हैं। और प्रेम का बंदी घर वल्लभीपुर के बंदी घर से बहुत विशाल है।
1: अगर ऐसा है तो सैनिकों बांध लो इन दोनों को।

0: नर्तकी, तुम्हें हमारे मित्र के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना ही होगा।
1: मैं कह चुकी हूँ महाराज, मैं अपनी कला को सारंग पर भेंट कर चुकी हूँ। जब तक सारंग का संगीत नहीं होगा, तब तक उर्वशी नहीं नाचेगी।
0: तुम्हें नाचना ही होगा उर्वशी। तुम ये न भूलो कि तुम राज रानी नहीं, राज नर्तकी हो, राज नर्तकी, वरना तुम्हें अपना सारा जीवन बंदी घर में बिताना होगा।
2: मान जाओ उर्वशी, अपनी कला को बंदी घर में घुट घुट कर मर जाने से बचाओ। हस्तिनापुर के राजकुमार तुम्हारी कला की पूजा करना चाहते हैं। वो तुम्हारी रूप राज के भी पुजारी बन चुके हैं।
3: आपने ठीक कहा मामात्य देवी, हमें अपनी पूजा करने का अधिकार दो।
1: जो स्वयं किसी की पुजारिन बन चुकी हो, उसकी पूजा? राजकुमार, जिस वस्तु का मैं समर्पण कर चुकी हूँ, उस पर मेरा अब क्या अधिकार?
3: मैं तुमसे प्रेम भी करने लगा हूँ।
1: वो प्रेम नहीं, वासना है। मैं उसे धिक्कारती हूँ। मैं अब उर्वशी या राजसभा की नर्तकी नहीं, एक साधारण बंदिनी हूँ, चिर बंदिनी। मेरे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा।
0: मिलेगा और सब कुछ मिलेगा।
2: मान जाओ उर्वशी, पाषाण हृदय न बनो।
1: निसंदेह मेरा हृदय निर्मल जल का बना हुआ नहीं, जो सभी देखने वाले अपना मुख उसमें देख सके। ये तो पाषाण है पाषाण, और पाषाण पर जो रेखा खिंच गई वो खिंच गई। इस पर जो चित्र अंकित हो गया वो कभी नहीं मिट सकता।
0: वो चित्र शायद सारंग का है। क्यों क्यों है ना?
1: हाँ,
0: तो हम पहले सारंग को ही देखते हैं, हम उसी के चित्र को मिटाते हैं। चित्र क्या, सारंग के अस्तित्व को ही मिटाए देते हैं।

0: मौत से खेलने का प्रयास कर रहे हो सारंग?
1: संसार में कोई अमर नहीं है महामात्य।
0: लेकिन जानते हो तुम्हारी मृत्यु के बाद उर्वशी को कितना दुख होगा?
1: नहीं।
0: अगर तुम अपना भला नहीं कर सकते तो न करो, पर इस बेचारी उर्वशी के जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो?
1: बहुत अच्छा, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही होगा। कला उन्मुक्त है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंगा की धारा जिसे कोई नहीं बांध सकता। ठीक है, मुझे उर्वशी से मिलवा दीजिए, मैं उसे समझाता हूं।

0: उर्वशी, तुम लोह श्रृंखलाओं में लिपटी हुई, ये
1: लोह श्रृंखलाएं नहीं सारंग, ये तो फूल मालाएं हैं।
0: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अच्छा होता कि तुम्हें इस हाल में देखने से पहले ही राजाज्ञा से मेरा मस्तक उड़ा दिया जाता।
1: सारंग,
0: उर्वशी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उर्वशी, कला उन्मुक्त है, स्वतंत्र है और सारे संसार की संपत्ति है। वो कला ही क्या जो दूसरों के हृदय तंत्री के तार न छेड़ सके। कला किसी एक की संतुष्टि के लिए नहीं, चराचर की तुष्टि के लिए होती है।
1: मैं जानती हूँ सारंग, लेकिन लेकिन मेरी कला पर अब मेरा अधिकार नहीं, तुम्हारा है।
0: कला पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो प्रकृति की संपत्ति है।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?

0: यही कि अपनी दी हुई भेंट वापस ले लो।
1: क्या कहा?
0: हाँ।
1: दी हुई भेंट वापस ले लूं?
0: मैं स्वयं ही तुम्हें वो भेंट कर रहा हूँ।
1: तो मैं कहूंगी कि तुमने मुझे हिमालय की चोटी से गिरा दिया सारे।
0: जो चढ़ता है वही तो गिरता है उर्वशी। मान जाओ, मान जाओ। अगर राजकुमार का हट यही है तो उनका हट पूरा करो।
1: समझी, मुझे नहीं मालूम था सारंग कि तुम इतने भीरु हो। आज मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए संसार में जीवन ही सबसे बड़ी वस्तु है। जीवन के लिए जीने वाले और जीने के लिए कला को बेचने वाले दोनों जा मेरे सामने।
0: तुमने मुझे समझने में भूल की है उर्वशी। समय बदल सकता है मगर सारंग, सारंग का हृदय, सारंग की अनुभूति कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। महामात्य, आपका काम हो गया। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया उर्वशी से। उर्वशी अवश्य नृत्य करेगी।
1: ठीक है, आज मैं हस्तिनापुर के युवराज के सामने दीप शिखा लेकर।

0: और वकी नहीं।
1: जो कुछ किया राज सत्ता ने, उर्वशी की कला जो असंख्य दीपकों में मुस्कुरा रही थी वो आज अमर हो रही है। आज वो चलती हुई दीप शिखाओं में अट्टहास करती हुई राज सत्ता को चुनौती दे रही है कि कला उन्मुक्त है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बांध सकता।

हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गिरीश की लिखी नाटिका दीपशिखा, निर्देशन अचला नागर का। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुखविंदर सिंह के गाए गीत से। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। गीतकार प्रशांत इंगोले, संगीतकार श्रेयस पुराणिक और जैकी बंजारी।

ये थे सुखविंदर सिंह फिल्म बाजीराव मस्तानी में। अब आपको सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में नासिर फराज का लिखा गीत। फिल्म का नाम है केके। काइट्स फिल्म का गीत है और इसे गाया है केके ने।

0: अभी आपने कबीर सिंह फिल्म का गीत सुना, गीत और संगीत था मिथुन का। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

पति पत्नी और वो, अभी आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की, संगीत रोहन रोचक कोहली का और बोल कुमार के।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए उर्मिला डंगर का गाया गीत, तर्ज बनाई है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं गुरु ठाकुर ने, फिल्म का नाम फिरारी की सवारी।

फेरारी की सवारी अभी आपने इस फिल्म में उर्मिला ढंगर को सुना, तर्ज बनाई थी प्रीतम ने, वो लिखे थे गुरु ठाकुर ने। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष

0: जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया। नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है।

0: उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
4: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार।

0: अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र
4: के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनामिका फिल्म के गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले ने, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपके लिए लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और आडे बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने, फिल्म का नाम है हरचाई।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

प्रेम कहानी। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
5: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
6: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
5: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
6: HIV
5: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
7: दोस्त यूनुस खान।
8: ये

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
2: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
3: हाँ?
1: कितनी गोली है?
3: छह सरदार,
1: छह, छह गोली, छह गोली है इसके अंदर, छह गोली और आदमी तीन। बहुत नाइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है।

0: होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए, ये तीनों आराम जादों को गोली नहीं।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है GP सिपी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।
1: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपीसीपी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपीसीपी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

इसके बाद आई आतिश, सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।

0: जा रही है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश ना थी ना रहेगी। तुम्हारी ज़रूरत थी, ज़रूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।
1: कौन है जो

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई, तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं, तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए, काश तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए। हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए। हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए। फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं। तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार।

पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ। उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जस

इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते। मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ, मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत।

तुमसे मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है। तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है। ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश, ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई। तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई, जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज़ में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने, दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

दिल से उतरकर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लपे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

0: मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख्य प्रदेशक खबरां। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस ते राजभाषा गौरव ते राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान कीते। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नूं देश दा माण दस्या। हिंदी दिवस ते हरियाणा विच कई प्रोग्राम आयोजित कीते गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सारियां नूं हिंदी दिवस की वधाई दित्ती। गणेश चतुर्थी का त्यौहार अज देश भर में श्रद्धा ते खुशी नाल मनाया गया। गणेश उत्सव 25 सितंबर नूं गणेश जी दीआं मूर्तियां दी विसर्जन नाल समाप्त होवेगा। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे 25 सालां दे जनतक जीवन, जनतक सेवा ते राष्ट्र निर्माण दे संदेश नूं जनता तक पहुंचाने लई 17 सितंबर तो शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत यूके व्यापक आर्थिक ते व्यापार समझौता हरियाणा लई नवे विश्व व्यापार दे मौके खोलेगा, जिस नाल राज दे मुख खेतरां जिवें कि टैक्सटाइल, जुत्ता, रतन ते गहना उद्योग ते इंजीनियरिंग उत्पादन नूं यूके दे बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 19 सितंबर नूं महाराणा प्रताप बागबानी यूनीवर्सिटी करनाल विखे बागबानी मेले ते हाटी एक्सपो दा उद्घाटन करेंगे ते मौसम विभाग ने अज तो लैके 17 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा च चंडीगढ़ विच किते किते गरज चमक ते तेज हवा नाल भारी वर्खा होने की संभावना जताई है। एसन मुख प्रदेशक खबरां।
2: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
3: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
4: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। नमस्कार श्रोतियों, सुरसांझ प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सतिंदर सरताज दे गाए गीत नाल असीं प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं। संगीत बीट मिनिस्टर दा।

0: ਸ੍ਰੋਤੇ ਸੁਰਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ ਹਸ਼ਮਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਗੀਤ।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR

0: सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: गायक कलाकार हशमत सुल्ताना, गीतकार जानी, संगीतकार ने बीप राख।

0: ਵਈ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: HIV
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ AIDS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ AIDS ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
4: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
3: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
4: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
3: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
4: Gems of India Challenge.

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक

0: रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।